0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वागर रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना। प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को। युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगे करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के में। अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरी की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम सुन पाएंगे 9 बजे हमारा स्वास्थ्य। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर। साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इस कार्यक्रम में जानिए घरेलू नुस्खे, डॉक्टरी सलाह और योग से जुड़ी बातें और खुद को रखिए तंदुरुस्त हर रोज।
1: आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे 9:30 पर। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी।
0: साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बताई दी हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच। आप कहिए, हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप ऐसे मिस कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की प्रातः कालीन सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखा है, तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपनो समुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM मते ने आप सबनो हनीमान स्वागत करा हो हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के भाई बोनो अमे हमारे टाइम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज हमारे कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि आदिवासी संस्कृति हरती बहुउद्देश्य कृषि वानिकी नो एक समाधान थी सके। तो भाई बोनो अड़ा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तक घना कानी बातें थायेगा पर कार्यक्रम शुरू करा इन्हें पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी बातें। तो भाई बोनो आप हमरते रहो आपड़ो रेडियो

0: ભાઈ બોનો ગીત તો આઈશું પૂરું, અને ગીત બાદ એક વખત ફેરી આપ સબનું ઘણે મન સ્વાગત કરો હો અમારે આજના કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ભાઈ બોનો ગીત કે પહેલા આપને વિષય બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે હરતે આદિવાસી સંસ્કૃતિ બહુઉદ્દેશ્ય કૃષિ વાનિકીનું એક સમાધાન થઈ શકે. તો ભાઈ બોનો અણ વિષય માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહી મનીષજી સર. તો સપ્તકી પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત મોરે કર આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્તે અંજલી.
0: સર આપકા બહુત બહુત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: આપકા ઓર વાગડ રેડિયો કા બહુત બહુત ધન્યવાદ.
0: સર જૈસા કી આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કી આદિવાસી સંસ્કૃતિ જો હૈ વો કિસ તરીકે સે વનો કે સંરક્ષણ મેં અપના યોગદાન દે સકતી હૈ. ક્યુંકી હમ દેખતે હૈ કી વન હમારે લિયે બહુત મહત્વપૂર્ણ હૈ. અભી કે સમય મેં હમ દેખ રહે હૈ કી વનો કે સંરક્ષણ કો લેકર હર કોઈ પ્રયાસ કર રહા હૈ. और आदिवासी संस्कृति हम सभी जानते हैं कि उनका जुड़ाव हमारे वनों से हमारी प्रकृति से पहले से ही बना हुआ है. तो ऐसे में हम आज कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से आदिवासी संस्कृति जो है वो बहुउद्देश्य कृषि वानिकी का एक समाधान हो सकती है.
1: जी बिल्कुल, ये बात सभी जानते हैं कि वन संरक्षण के जो प्रयास है और आदिवासी संस्कृति से इसका जुड़ाव बहुत ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो यदि वन संरक्षण के प्रयासों में आदिवासी पारंपरिक ज्ञान और लोक संस्कृति से जुड़े तरीकों का जो महत्व है उसका इनकी लोक संस्कृति में भी जो है निहित वनीकरण के जो सूत्र हैं वो अक्सर बड़े प्रभावी होते हैं और वो स्थायी भी होते हैं. वनों को जो बचाने में हमेशा से लोक संस्कृतियों का योगदान रहा है.
0: बिल्कुल.
1: उसमें आदिवासी संस्कृति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज हम देख पा रहे हैं कि जो जंगल हमको दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण एक बड़ा जंगल हम देख पाते हैं. पेड़, वनस्पति, भोजन उत्पादन की प्रक्रिया, परागण करने वाले कीट, मिट्टी की उर्वरकता, जल स्रोतों और जलवायु संतुलन, इन सभी के लिए वन बहुत ही जरूरी है.
0: बिल्कुल.
1: और इसीलिए वन संरक्षण को सिर्फ वृक्षारोपण तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि ये एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की देखभाल का महत्वपूर्ण मसला है.
0: बिल्कुल.
1: तो जिसका उद्देश्य भी है कि वनों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाएं, इसके संरक्षण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम प्रोत्साहित करें और हम मिलके पेड़ लगाने की जो मुहिम है यहाँ तक सीमित न रह के इस पारिस्थितिक तंत्र की संपूर्णता से जुड़ी हुई सोच के साथ इसे अपने जीवन में उतारें.
0: बिल्कुल.
1: क्योंकि मैं फिर से बोलना चाहूंगा, वन है जो हमारे भोजन, पोषण, हमारी दवाइयां और हमारे पशुधन, इसी के साथ साथ हमारी मिट्टी और जल, इन सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण है.
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा. सर जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमारे जो वन अभी के समय में बचे हुए हैं वो आदिवासी संस्कृति के एक जुड़ाव से, उनके प्रकृति के प्रति उनका जो समर्पण है उसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं. यही सर अभी के समय में क्या चुनौतियां हमारे सामने आती है वनीकरण को लेकर, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी.
1: जी, सामान्य रूप से यदि हम चुनौतियों की बात करें तो वनीकरण के जो कार्यक्रम है आजकल तो ज्यादातर उनमें वृक्षारोपण पर ध्यान दिया जाता है. प्रशासनिक और तकनीकी दृष्टिकोण से हम इसे ही वनीकरण का मुख्य तरीका मान लेते हैं. यह तरीका पर्यावरण के संपूर्ण पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है.
0: बिल्कुल.
1: अगर हम बात करें कि हम ऐसा क्यों मानते हैं कि ये पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है तो हम देखते हैं कि कई बार वनीकरण में जिन प्रजातियों का चयन किया जाता है तो वो गैर स्थानीय प्रजातियां होती हैं.
0: बिल्कुल.
1: इसी कारण से कई बार ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के भी लिए नुकसानदायक होती है और वनीकरण के लिए किए गए हमारे जो प्रयास हैं उनमें हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितना हमने उसके लिए प्रयास किए थे, वो चाहे हमारे आर्थिक हो या अन्य तरह के प्रयास हों.
0: जी जी.
1: इसी तरह से यदि हम देखें कि दक्षिणी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, जहां वागड़ अंचल में, तो इसके दुष्प्रभावों को हम साफ देख सकते हैं. पारंपरिक रूप से राजस्थान के सामुदायिक वन और गोचर भूमि या चारागाह स्थानीय पौधों और जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षित जगह हुआ करते थे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ गैर स्थानीय पौधे काफी बड़ी मात्रा में लगा दिए गए हैं, जिससे न केवल स्थानीय घास की कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही है, बल्कि वन्य जीव और परागण करने वाले कीटों का प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो रहा है।
0: जी बिल्कुल।
1: वन संरक्षण की योजनाओं में इन परिस्थिति की और सांस्कृतिक जरूरतों की ये एक तरह से अनदेखी है, जिससे वन प्रबंधन में एक रूपता और कृत्रिमता बढ़ गई है। यानी कि एक ही तरह के पेड़ हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि जैव विविधता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि हम आपके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि किस तरीके से वनीकरण के जो मौजूदा प्रयास हैं, उसमें हमें कुछ चुनौतियां देखने को मिल रही है। नहीं सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्राकृतिक ज्ञान और स्थानीय संस्कृति का क्या योगदान है वन संरक्षण को लेकर।
1: पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय संस्कृति वन संरक्षण के प्रयासों में जो इनके सांस्कृतिक तरीके हैं उनका बहुत विशेष महत्व है।
0: जी।
1: लोक संस्कृति में निहित वनीकरण के सूत्र अक्सर प्रभावी और स्थायी होते हैं। तो उदाहरण के लिए राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान को हम अगर देखें और इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, तो पहला दृष्टिकोण प्रशासनिक है, जो कि एक मॉडल पे आधारित होता है।
0: जी।
1: जिसमें कई बार व्यवसायिक वृक्षारोपण को ही मुख्य उपाय मान लिया जाता है। तो वन विभाग का या प्रशासन का ये जो दृष्टिकोण है स्थानीय क्षेत्रों में अक्सर असफल हो जाता है।
0: जी।
1: क्योंकि ये कई प्रजातियां ऐसी होती है जो हमारे यहाँ की जलवायु के अनुरूप नहीं होती।
0: जी।
1: तो यहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वनीकरण के स्थानीय मॉडल अपनाए जाने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के बजाय पहले स्थानीय घास और पौधों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये पौधे कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं।
0: जी जी।
1: और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाने की पहली सीढ़ी हम इन्हें मान सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब इसी तारतम्य में यदि हम दूसरे दृष्टिकोण की बात करें तो जो हमारा आदिवासी समुदाय है, जिन्होंने अपनी पारंपरिक वनीकरण पद्धतियों का इस्तेमाल किया, उन्होंने हमारे वागड़ क्षेत्र की भूमि पर स्थानीय पौधों घासों का रोपण किया, जो जगह किन्हीं कारणों से या तो पेड़ों की कटाई से या किसी तरह की दूसरी परियोजनाओं में खत्म हो गई थी, वहां पौधारोपण के साथ साथ जल संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई।
0: जी जी।
1: और परिणाम स्वरूप कुछ ही वर्षों में वहां वन्य जीवों की भी वापसी हुई है, जल स्रोत पुनर्जीवित हुए हैं और समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र की झलक वहां

0: हमें वन संरक्षण में आदिवासी लोक संस्कृति को जगह देनी होगी। वनों की पारंपरिक अवधारणाएं, जैसे हमारे वागड़ क्षेत्र में मातानु वन, देवनु वन की जो संस्कृति हमें वनों के स्थानीय संरक्षण के सही रास्ते दिखाती है, क्योंकि इस तरह से संरक्षित की गई जगह से उनके उत्पादों का उपयोग करने में तो कोई रोक नहीं है, पर यहाँ से पेड़ों को काटा नहीं जाता
1: जी जी,
0: क्योंकि इन्हें देवी या देवता का प्रतीक भी माना जाता है। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सामूहिक चेतना के सिद्धांत पे ये आधारित होते हैं, जिससे समाज में साझा विश्वास और मूल्यों की शक्ति पर जोर दिया जाता है। यह समुदाय को प्रेरित करता है कि वे अपने पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाएं और वनों को एक पारिवारिक उत्तरदायित्व के रूप में देखें।
1: जी जी।
0: इसलिए पारिवारिक स्तर पर बहुउद्देशीय कृषि वानिकी की अवधारणा भी एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकती है, जिससे समुदाय अपने पर्यावरण के साथ भावनात्मक और नैतिक जुड़ाव महसूस करते हैं।
1: जी जी।
0: वन संरक्षण और वनीकरण नीतियों में लोक संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान का समावेश अत्यंत आवश्यक है, जो आदिवासी संस्कृति में पहले से ही विद्यमान है।
1: जी बिल्कुल सर।
0: जब तक वनीकरण नीतियों में सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय संस्कृति के दृष्टिकोण को नहीं अपनाया जाएगा, तब तक पर्यावरणीय स्थिरता का हमारा जो सपना है वो भी पूरा करने में कठिनाइयां होगी।
1: जी जी।
0: वनों की वास्तविक भलाई के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से हटकर पारंपरिक और सामुदायिक उपायों को अपनाने की जरूरत है।
1: जी जी।
0: तो लोक संस्कृति में निहित वनीकरण के सूत्र ही हमें वनों के संरक्षण और इनके स्थायित्व की दिशा दिखाते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से वनीकरण के लिए आदिवासी संस्कृति की जो चीजें हैं उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आदिवासी संस्कृति में वनों को देवता या माता के तुल्य माना जाता है और उनकी कटाई नहीं की जाती है, तो ऐसे में हम कार्यक्रम के माध्यम से ये समझ पाए कि किस तरीके से आदिवासी जो संस्कृति है वो बहुउद्देश्य कृषि वानिकी का एक समाधान हो सकती है। तो सर, कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी हो गई है, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: જેમ કે ભાઈ બોનો આપણે આપણા વેસ્ટમાં મનીષજી સર જોડે તક હતા ને એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકા તકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હૈ। આશા કરા હો કે હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હૈ આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડા પણ સાથે પહેલા હામરી લાઈક ઓર ગીતને મોરે પડા સૂટા।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है, अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह या आपड़े नी कितली शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा
0: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो
3: होवे आज नाना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in हर घर

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है बच्चों को असफलता से सीखना कैसे सिखाएं।
0: बिल्कुल
1: कशिश, श्रोता साथियों से पूछना चाहेंगे कि क्या आपके बच्चे ने कभी किसी परीक्षा में कम अंक आने पर खुद को कमजोर समझ लिया है? क्या खेल में हारने के बाद उसने दोबारा कोशिश करने से मना कर दिया? क्या छोटी सी असफलता के कारण वह निराश, उदास या आत्मविश्वासहीन हो जाता है? यदि हाँ तो यह केवल आपके बच्चे की नहीं बल्कि आज के समय में अनेक बच्चों की समस्या है।
0: बिल्कुल अंजलि
1: जी, क्योंकि कशिश हम अक्सर बच्चों को सफलता का महत्व तो बताते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं सिखा पाते कि असफलता का सामना कैसे किया जाए।
0: जी
1: जबकि
0: हाँ।
1: जीवन की सच्चाई यह है कि सफलता और असफलता दोनों जीवन का हिस्सा है, क्योंकि जो बच्चा असफलता से सीखना सीख जाता है वही आगे चलकर मजबूत, आत्मविश्वासी और सफल इंसान बनता है।
0: बिल्कुल,
1: आज का हमारा विषय है बच्चों को असफलता से सीखना कैसे सिखाएं।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें हम कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर श्रोता साथियों से ढेर सारी करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी जी,
0: तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों को असफलता से सीखना हम कैसे सिखा सकते हैं। तो अंजलि जी, सबसे पहले हमें अपने बच्चों को ये बताना होगा कि असफलता जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। साथियों, कोई भी व्यक्ति हमेशा सफल नहीं होता। हर सफल इंसान के पीछे कई असफलताएं छिपी हुई होती हैं। हमें बच्चों को ये समझाना होगा कि गलती करना गलत नहीं है, हारना अंत नहीं है। असफलता सीखने का अवसर है और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, जब ये बात बच्चे समझ लेते हैं कि असफलता सामान्य बात है, तो उनका डर कम होने लगता है।
1: बिल्कुल यही बात आती है श्रोता साथियों, बच्चों पर अत्यधिक दबाव न डालने की, क्योंकि कशिश हम देखते हैं कि कई बार माता पिता अनजाने में बच्चों पर बहुत अधिक अपेक्षाएं थोप देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमेशा प्रथम आने का दबाव, दूसरों से तुलना, छोटी गलती पर डांटना, हर समय बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। श्रोता साथियों, ऐसा माहौल बच्चों में असफलता का डर पैदा करता है। बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि उनका मूल्य केवल अंकों या उपलब्धियों में नहीं तय होता।
0: जी हाँ,
1: हर बच्चा अलग होता है। किसी की पढ़ाई में रुचि होती है, किसी की खेल में, तो किसी की कला में। यदि हम बच्चों की तुलना दूसरों से करेंगे तो वे निराश हो सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसके बजाय उनकी मेहनत और प्रयास की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि कशिश जब बच्चों को अपने प्रयासों की प्रशंसा मिलती है तो वह असफलता होने पर भी दोबारा प्रयास करने का साहस जुटा पाते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो असफलता के कारणों को समझना भी जरूरी है, क्योंकि साथियों जब बच्चा किसी कार्य में सफल नहीं होता तो उसे दोष देने के बजाय उसके साथ बैठकर कारणों पर हम चर्चा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि तैयारी में कमी कहाँ रह गई है, कौन सी बात बेहतर की जा सकती थी, अगली बार क्या बदलाव जरूरी है। इससे अंजलि जी बच्चा समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर ध्यान देना सीखता है।
1: जी हाँ,
0: कई बार हम देखते हैं अंजलि जी की जो बड़े लोग होते हैं वो बच्चे की हर समस्या खुद हल कर लेते हैं। इससे बच्चा संघर्ष करना नहीं सीख पाता साथियों, उसे अपने निर्णय लेने आपते हैं, छोटी जिम्मेदारियां दे, समस्याओं का हल खोजने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि जब बच्चा छोटे संघर्षों का सामना करता है तो वह बड़े संघर्षों के लिए भी तैयार हो पाता है।
1: बिल्कुल यही श्रोता साथियों बात आती है, बच्चों को उन लोगों की

0: कहानियां सुनाएं जिन्होंने कई बार असफल होने के बाद सफलता प्राप्त की। ऐसी कहानियां बच्चों को सिखाती है कि असफलता स्थायी नहीं होती, धैर्य और मेहनत जरूरी है और सफलता एक लंबी यात्रा है। कहानियां बच्चों पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं और उन्हें प्रेरित करती हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कशिश कि असफलता के बाद बच्चों के मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं दूसरों से कम हूँ, मैं हमेशा हार जाता हूँ। ऐसे समय में उन्हें सकारात्मक सोच सिखानी चाहिए। उन्हें हमें बताना होगा कि तुम कोशिश कर रहे हो, यह सबसे महत्वपूर्ण है।
1: जी हाँ,
0: गलतियाँ सीखने का हिस्सा है, अगली बार तुम और बेहतर करोगे। यही सारी जो चीजें होती हैं कशिश, वो बच्चों को उनके जीवन में असफल होने से रोक पाती है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर बच्चे इन सारी चीजों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान अपने आप खोज पाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है कि हम अपने बच्चों को असफलता से सीखना कैसे सिखा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले कशिश हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे थे कि किस तरीके से हमें बच्चों को असफलता से सीखना सिखाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, इसके लिए हमें भावनाओं को व्यक्त करने का बच्चों को अवसर देना है। जब बच्चा कशिश असफल होता है तो वह दुखी और निराशा महसूस करता है। उसे अपनी भावना व्यक्त करने हमें देना है, उसकी बात को ध्यान से सुनना है, उसकी भावनाओं को समझना है, उसे ये महसूस कराना है कि परिवार उसके साथ है, क्योंकि भावनात्मक सहयोग बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।
1: जी हाँ,
0: आज के समय में बच्चे तुरंत परिणाम चाहते हैं श्रोता साथियों, लेकिन जीवन में बड़ी उपलब्धियां समय और मेहनत मांगती है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को समझाएं कि सफलता एक प्रक्रिया है, लगातार प्रयास जरूरी है, हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है। जो बच्चा धैर्य रखना सीख जाता है वह जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनका बेहतर सामना कर सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथियों, अगर बात करें स्कूल परिवार की संयुक्त भूमिका की, तो बच्चों में लचीलापन और आत्मविश्वास विकसित करने में स्कूल और परिवार दोनों का योगदान जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, शिक्षकों को बच्चों की गलतियों को सीखने का अवसर बनाना चाहिए। माता पिता को बच्चों का भावनात्मक सहारा बनना चाहिए।
0: जी जी,
1: साथ ही बच्चों को प्रतियोगिता से अधिक सीखने पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अंजलि जी, हम देखेंगे साथियों कि जब घर और विद्यालय दोनों सहयोग करते हैं तो बच्चा मानसिक रूप से मजबूत बनता है।
0: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों बात आती है, गांव और समुदाय में भी बच्चों को ये संदेश देना जरूरी है कि हार जीवन का अंत नहीं है।
1: जी,
0: खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी बढ़ाएं, बच्चों को मंच पर बोलने के अवसर दें, प्रयास करने वालों का सम्मान करें और केवल विजेताओं की ही नहीं मेहनत करने वालों की भी सराहना करें।
1: जी,
0: इससे बच्चों में आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। श्रोता साथियों, बच्चों को हर बार जितना सिखाने से अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें हर परिस्थिति में संभालना हम सिखाएं।
1: बिल्कुल,
0: जीवन में ऐसे अनेक अवसर आएंगे जब उन्हें निराशा, कठिनाई और असफलता का सामना करना पड़ेगा। यदि बचपन में ही वे गिरकर उठना, हारकर सीखना और रुकने के बजाय आगे बढ़ना सीख जाते हैं तो कोई भी चुनौती उन्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती।
1: जी हाँ,
0: हम बच्चों के लिए ऐसा वातावरण बनाएं जहाँ गलती करने पर डर नहीं बल्कि सीखने का अवसर मिले, जहाँ हार का मजाक न उड़ाया जाए बल्कि प्रयास की सहारा न की जाए, जहाँ सफलता का अर्थ केवल जीतना नहीं बल्कि निरंतर सीखते रहना माना जाए।
1: बिल्कुल,
0: जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है कशिश, जिन्होंने असफलता को अपनी मंजिल का रास्ता बना लिया था। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बचपन केवल उपलब्धियां हासिल करने का समय नहीं है बल्कि जीवन को समझने, अनुभवों से स्वयं को गढ़ने का समय होता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि कशिश बच्चे जब किसी काम में असफल होते हैं तो वे उस क्षण उन्हें सबसे ज्यादा जरूरी किसी फैसले की नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो उनके साथ खड़ा होकर कहे, कोशिश करना बंद मत करो, हम मिलकर समझेंगे कि आगे क्या करना है। यही जो भरोसा होता है श्रोता साथियों, यकीन मानिए बच्चों के भीतर वह ताकत पैदा करता है जो उसे कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ने का साहस देती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों को यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, हमें बच्चों के सामने सफलता की ऐसी तस्वीर नहीं रखनी चाहिए जिसमें केवल जीत, अच्छे अंक और पुरस्कार ही दिखाई दे। उन्हें हमें ये भी बताना है कि सीखने की यात्रा में रुकावटें तो आएंगी, योजना बदलती है और कई बार मेहनत के बावजूद मनचाहा परिणाम भी नहीं मिलता। ऐसे अनुभव अंजलि जी बच्चे को धैर्य, निर्णय लेने, अपनी कमियों को पहचानने और नए तरीके आजमाने की क्षमता देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि श्रोता साथियों हम हर मुश्किल को बच्चे से दूर कर देंगे तो वह कठिन समय में स्वयं रास्ता खोजने में कठिनाइयां महसूस कर सकता है।
0: जी हाँ कशिश, इसलिए श्रोता साथियों हमें बच्चों से केवल यह नहीं पूछना चाहिए तुम्हें कितने अंक मिले हैं बल्कि कभी यह भी पूछना चाहिए कि आज तुमने नया क्या सीखा, कौन सी चीज तुम्हें कठिन लगी और अगली बार तुम क्या अलग करना चाहोगे। ऐसे सवाल बच्चे का ध्यान परिणाम से हटाकर सीखने की प्रक्रिया पर ले जाते हैं। धीरे धीरे वह अपनी प्रगति को दूसरों से नहीं बल्कि अपने पिछले प्रयास से तुलना करना सिखाता है।
1: जी हाँ,
0: याद रखिए कि एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन हम हर गिरने के बाद उसे साइकिल छीन नहीं लेते बल्कि उसे फिर उठाते हैं, संभालते हैं, फिर से प्रयास करने देते हैं। तो जीवन की चुनौतियों के साथ भी हमें बच्चों के प्रति यही धैर्य रखना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: हम अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दें श्रोता साथियों जिनमें उनके सपनों के साथ साथ उन्हें चुनौतियों से निपटने की समझ भी मिले, उन्हें आगे बढ़ने की आजादी दें, अपनी गलतियों से सीखने का अवसर दें और यह विश्वास दें कि उनका भविष्य किसी एक परीक्षा, प्रतियोगिता या परिणाम से तय नहीं होता। बच्चे को हर बार जीतने वाला नहीं, बल्कि हर अनुभव के बाद थोड़ा और समझदार, साहसी और सक्षम बनने वाला इंसान बनाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जब बच्चा यह सीख जाता है कि रास्ते में आने वाली ठोकरें उनकी पहचान नहीं बल्कि उनकी यात्रा का हिस्सा है, तब वह असफलता से डरता नहीं। वह उससे संवाद करना, उसे समझना और उसके आगे अपना रास्ता बनाना सीख जाता है।
1: बिल्कुल।
0: यही सीख उसे बचपन से आगे बढ़ाकर एक मजबूत व्यक्ति में बदलती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल।
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथ ही जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बात रहने वाली है। विषय है हमारा कि हमें अपना मन बदलकर जो स्थिति होती है हम उसे बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि हालात हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन उन हालात को देखने का हमारा नजरिया हमारे हाथ में जरूर होता है।
0: जी हाँ,
1: आज के इस विषय के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि हम अक्सर कहते हैं कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरे पास अवसर नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। लेकिन श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि परिस्थिति को बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि हमारे मन और सोच से ही हो सकती है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हम इसी विषय को लेकर बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से जब हमारा मन बदल जाता है तो परिस्थितियाँ भी बदल जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, कार्यक्रम के माध्यम से आज का हमारा विषय जुड़ चुका है। हम बात कर रहे हैं कि अपना मन बदलकर हम स्थिति किस प्रकार से बदल सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले बताया था कि हमने अक्सर लोगों को एक कहते हुए सुना है कि मेरी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, मेरे पास अवसर नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता या वैसा नहीं कर सकता, या फिर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, यहाँ पर हम आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन में हर किसी के सामने चुनौतियाँ आती ही रहती हैं। किसी के सामने पढ़ाई की चुनौती होती है जागृति जी, तो किसी के सामने करियर की है।
1: जी हाँ।
0: किसी के सामने आर्थिक समस्या है, तो कोई अपने आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा होता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनसे निपटने का पहला कदम एक ही है, और वो है हमारी सोच में बदलाव।
1: बिल्कुल कशिश, जब कोई कठिन परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हमारा मन तुरंत नकारात्मक विचारों से भर जाता है। हमें लग सकता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन श्रोता साथियों, एक ही परिस्थिति को दो लोग बिल्कुल अलग तरीके से देख सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: एक व्यक्ति कह सकता है कशिश की समस्या मेरे लिए बहुत बड़ी है, वही दूसरा व्यक्ति कहता है कि मुश्किल है लेकिन मैं इसे धीरे धीरे हल करने की कोशिश करूंगा।
0: जी जी,
1: परिस्थिति वही है श्रोताओं, लेकिन सोच अलग है, और यही सोच आगे चलकर दोनों के परिणामों को अलग कर सकती है।
0: जी हाँ।
1: इसीलिए युवाओं के लिए जरूरी है कि वे हर समस्या को केवल परेशानी के रूप में न देखें, बल्कि ये भी सोचें कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकती हूँ या क्या सीख सकता हूँ।
0: बिल्कुल जागृति जी। इसी के साथ साथियों, कई बार समस्याएं जितनी बड़ी नहीं होती, हमारा डर उससे भी ज्यादा बड़ा बना देता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए। अब दो रास्ते हैं हमारे सामने, एक तरफ बैठकर ये सोचना कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, और दूसरी तरफ ये समझना श्रोता साथियों कि मेरी तैयारी में कहाँ कमी रह गई है।
1: बिल्कुल।
0: और अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। जागृति जी, पहली सोच हमें रोक देती है, जबकि दूसरी सोच जो है वो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। कहना चाहेंगे हमारे युवा साथियों से कि इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हर समय सकारात्मक रहने का दिखावा किया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि समस्या को स्वीकार करते हुए समाधान की दिशा में कुछ नया सोचा जाए।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि अपना मन बदलो, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी भावनाओं को दबा दो या अपनी परेशानियों को नजरअंदाज कर दो। मन बदलने का अर्थ है श्रोताओं कि अपनी सोच को एक नए दृष्टिकोण से देखना।
0: बिल्कुल।
1: अगर सफलता मिली है तो उसे अपनी पहचान न बनाए। अगर किसी ने आपकी आलोचना की है तो उसे अपनी क्षमता का अंतिम फैसला न माने। अगर कोई अवसर छूट गया है तो ये न सोचे कि जिंदगी में अब कोई अवसर ही नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: अपने आप से कहे कि जो हुआ वो मेरे जीवन का एक हिस्सा है और पूरी कहानी नहीं है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि युवावस्था जो है वो सपनों को आकार देने की अवस्था होती है। इस उम्र में दोस्तों व्यक्ति के पास ऊर्जा भी होती है, सीखने की क्षमता भी होती है, और नई शुरुआत करने का अवसर होता है। लेकिन कई बार जागृति जी, तुलना और असफलता आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है।
1: बिल्कुल।
0: हम कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर किसी दूसरे की सफलता देखकर हमें लगता है युवा साथियों कि बाकी सभी हमसे आगे निकल गए हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग अलग होती है।
1: जी हाँ।
0: किसी और की गति देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझिए। अपने मन में ये विश्वास पैदा कीजिए कि मैं जहाँ हूँ वहीं से मैं अपनी शुरुआत कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल। और हम कह सकते हैं कशिश कि छोटी सोच से बड़ी परिस्थिति नहीं बदली जा सकती है। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर ही रहे हैं आज के इस विषय को लेकर कि हमारा मन बदलकर हम अपनी स्थिति को भी बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं इस गीत को।

0: चाहिए, रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए, नई नई स्किल्स को सीखना होगा, अपने काम की योजनाओं को बनाना होगा, गलतियों से सीखना होगा, साथ ही अपने लक्ष्य पर लगातार काम करते रहना होगा।
1: जी जी,
0: ये जो छोटे छोटे कदम है वो धीरे धीरे बड़ी स्थिति पैदा करते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही हमारे युवा साथियों को असफलता को देखने का नजरिया भी बदलना चाहिए, क्योंकि युवाओं के जीवन में असफलता का आना स्वाभाविक है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, परीक्षा में कम अंक आ सकते हैं, नौकरी नहीं मिल सकती, किसी प्रतियोगिता में हार हो सकती है या कोई योजना सफल नहीं हो सकती, लेकिन असफलता का अर्थ ये नहीं है कि आप असफल व्यक्ति हैं। असफलता केवल ये बताती है कि आपकी वर्तमान कोशिशों को शायद किसी बदलाव की जरूरत है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में हमारे युवा साथी अपने आप से पूछ सकते हैं कि कहाँ कमी रह गई, आपको क्या सीखने की आवश्यकता है दोस्तों, और अगली बार में आप क्या अलग करने की कोशिश करेंगे।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, जब ये सवाल हमारे मन में आते हैं तो असफलता एक रुकावट के बजाय सीखने का अवसर बन जाती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें हम तुरंत बदल नहीं सकते, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी।
1: बिल्कुल,
0: उदाहरण के लिए अगर किसी युवा को किसी परीक्षा में मनचाहा परिणाम नहीं मिला तो लंबे समय तक शिकायत कर सकता है, लेकिन इसे परिणाम नहीं बदलेगा।
1: जी हाँ,
0: इसके बजाय वो अपनी तैयारी की रणनीति बदल सकता है। कशिश, किसी शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकता है और फिर से प्रयास भी कर सकता है।
1: जी हाँ,
0: और यही अंतर है, शिकायतें हमें वहीं रोकती है जबकि समाधान हमें आगे बढ़ाता है।
1: जी हाँ जागृति जी, साथी दोस्तों, हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनकी बातें और सोच हमारे मन पर प्रभाव डाल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: अगर हमारा वातावरण लगातार निराशा, मजाक, नकारात्मकता और हतोत्साह से भरा हुआ है तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है जागृति जी। इसलिए ऐसे लोगों के साथ हमारे युवा साथियों द्वारा समय बिताना अच्छा होता है जो हमें प्रेरित करे, हमारी गलतियों पर सही सलाह दे साथियों, और हमें बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: जी हाँ,
1: साथ ही श्रोता साथियों, हमें खुद भी दूसरों के लिए ऐसा ही सकारात्मक वातावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
0: बिल्कुल कशिश, जैसा कि आपने बताया कि हमें अपने आसपास का माहौल भी मन को प्रभावित करता हो ऐसा बनाना होगा। साथ ही हमें लक्ष्यों को स्पष्ट रखना होगा ताकि हमारा जो मन है वो भटके नहीं।
1: बिल्कुल,
0: कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां इसलिए भी कठिन लगती है श्रोताओं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है।
1: जी जी,
0: हमारे युवा साथियों को हम कहना चाहेंगे कि अपने छोटे और बड़े लक्ष्य लिखने होंगे आपको। उदाहरण के लिए, आज क्या करना है, इस सप्ताह क्या सीखना है और आने वाले महीने में किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। लक्ष्य स्पष्ट होने पर समस्या खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें संभालने का तरीका बेहतर हो जाता है।
1: जी जी,
0: इसलिए याद रखिए, दिशा स्पष्ट हो तो धीमी गति भी हमें आगे ले जाती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों हमें अक्सर लगता है कि बदलाव के लिए सही समय का इंतजार हमें करना चाहिए, लेकिन सही समय का इंतजार करते करते कई अवसर ऐसे निकल जाते हैं जागृति जी, जो हमें पता ही नहीं चलता।
0: बिल्कुल,
1: अगर आपको दोस्तों अपनी पढ़ाई में सुधार करना है तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो आज पहला कदम उठा लीजिए। अगर आत्मविश्वास बढ़ाना है तो छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेना शुरू कीजिए। अगर दोस्तों नकारात्मक सोच कम करनी है तो अपने विचारों को पहचानना शुरू कीजिए।
0: जी हाँ,
1: कहते हैं जागृति जी कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन लिया गया सही फैसला बदलाव की शुरुआत जरूर कर सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, इसीलिए हम कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि हम दूसरों से तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन खुद से बातचीत करना भूल जाते हैं।
1: जी,
0: कभी शांत होकर खुद से पूछिए श्रोताओं कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ, मुझे किन चीजों से डर लगता है, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है, मैं आज अपने लिए एक छोटा सा अच्छा कदम क्या उठा सकता हूँ।
1: जी
0: साथियों, जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं तो निर्णय लेना आसान होता है। जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता है कशिश, जैसे कि मौसम हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, दूसरों के फैसले हमारे नियंत्रण में नहीं होते, अचानक आने वाली समस्या हमें नहीं पता होती है, बीती हुई घटनाएं हमेशा नहीं बदल सकते हैं।
1: जी जी,
0: लेकिन हम ये तय कर सकते हैं दोस्तों कि अब आगे क्या करना है। यही सोच हमारे युवाओं को मजबूत बनाती है। अगर दरवाजा बंद हो गया है दोस्तों तो कुछ समय रुक कर देखिए क्या कोई दूसरा रास्ता है, अगर रास्ता कठिन है तो क्या कदम छोटे किए जा सकते हैं, अगर कोई अवसर ही नहीं मिला तो क्या नई क्षमता विकसित की जा सकती है। हर परिस्थिति में कोई न कोई अगला कदम जरूर खोजा जा सकता है,
1: बस हाँ,
0: हमारे अंदर सोचने की क्षमता होनी चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो ऐसे में युवा साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों आपके जीवन में आने वाली हर परिस्थिति आपके खिलाफ नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: कुछ परिस्थितियाँ आपको मजबूत बनाने, कुछ सिखाने और कुछ आपको आपकी वास्तविक क्षमता पहचानने के लिए भी आती है। इसलिए जब अगली बार कोई मुश्किल आपके सामने आ जाए तो तुरंत ये मत कहिए कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है।
0: बिल्कुल,
1: एक बार रुक कर पूछिए साथियों कि इस स्थिति में आप कर क्या सकते हैं। हो सकता है कि आपका यही सवाल आपकी दिशा बदल दे। याद रखिए युवा साथियों की परिस्थिति बदलने से पहले दृष्टिकोण बदलता है। दृष्टिकोण बदलने से व्यवहार बदलता है और व्यवहार बदलने से परिणाम बदलते हैं। जागृति जी,
0: बिल्कुल।

0: इसलिए अपने मन को निराशा से संभावना की ओर, डर से प्रयास की ओर और शिकायत से समाधान की ओर लेकर जाइए, क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: बस अपने भीतर देखने का नजरिया बदलना होता है।
1: जी हाँ कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हालात जैसे हैं उन्हें तुरंत बदल पाना हमेशा संभव नहीं है, लेकिन उन हालात में हम क्या सोचते हैं, क्या सीखते हैं और अगला कदम क्या उठाते हैं, ये हमारे हाथ में जरूर है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाइए, सोच को सकारात्मक दिशा दीजिए और छोटे छोटे कदमों से अपनी स्थिति को बेहतर बनाइए, क्योंकि हमारी सोच हमारी दिशा है और हमारा प्रयास ही हमारी पहचान है। इसलिए मन बदलिए, नजरिया बदलिए और अपनी कहानी को एक नई दिशा जरूर दीजिए।
0: जी हाँ जागृति जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम युवाओं की आवाज में हमारे युवा साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको सुनवाना चाहेंगे यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: साथ ही आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वक्र रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हम बात करने वाले हैं सड़क सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, सड़क केवल आने जाने का रास्ता नहीं है बल्कि हर दिन हजारों जिंदगियों को जोड़ने वाली जीवन रेखा है। एक छोटी सी लापरवाही किसी परिवार की खुशियों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सड़क सुरक्षा केवल सरकार पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल, तो जागृत दीजिए, आज कार्यक्रम सच्चा स्वराज में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे श्रोता साथियों को क्यों ना हम एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले अंजलि हमने विषय बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं सड़क सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को लेकर।
1: बिल्कुल श्रोता साथियों, सड़कें किसी भी देश के विकास की धमनियों के समान होती है। ये गांवों को शहरों से, लोगों को उनके कार्यस्थल से और परिवार को एक दूसरे से जोड़ती है। लेकिन यही सड़कें कभी कभी हमारी छोटी सी लापरवाही के कारण दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है।
0: जी हाँ।
1: सड़क दुर्घटनाएं केवल वाहन या सड़कों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि परिवार की खुशियों, सपनों और भविष्य को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सड़क सुरक्षा आज केवल यातायात विभाग या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल।
1: सड़क पर चलते समय हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हम नियमों को अपनी सुविधा के अनुसार देखें, या फिर अपनी और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। वास्तव में सड़क सुरक्षा की शुरुआत किसी कानून, अभियान या सरकारी आदेश से नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिम्मेदार सोच से होती है।
0: बिल्कुल अंजलि, आज सड़कों पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दोपहिया वाहन, कार, बस, ट्रक और कई सारे वाहन हमारी दैनिक जरूरतों का हिस्सा बन चुके हैं।
1: बिल्कुल।
0: यातायात बढ़ने के साथ सड़क पर सावधानी की आवश्यकता भी बढ़ गई है। अगर वाहन चालक तेज गति, गलत दिशा, मोबाइल फोन या लापरवाही जैसी आदतों को अपनाता है तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। एक सड़क दुर्घटना का प्रभाव केवल दुर्घटना में शामिल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, परिवार के सदस्य मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इसलिए सड़क सुरक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल दुर्घटनाओं को कम करना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाना है।
1: बिल्कुल जागृति जी, अगर यही बात करें कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है, तो श्रोता साथियों, सड़क सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो सड़क का उपयोग कर रहा है। वाहन चालक हो, पैदल यात्री हो, साइकिल चालक हो या कोई अन्य सड़क उपयोगकर्ता, हर व्यक्ति को अपनी भूमिका समझनी होगी। हम अक्सर दुर्घटनाएं होने के बाद सड़क, वाहन या व्यवस्था को दोष देने लगते हैं, लेकिन कई दुर्घटनाओं को सावधानी और नियमों के पालन से रोका जा सकता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति यह सोच ले कि मेरी एक छोटी सी सावधानी किसी की जिंदगी बचा सकती है, तो सड़क सुरक्षा का अभियान वास्तव में जन अभियान बन सकता है।
0: बिल्कुल।
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि इसके लिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना है, जैसे कि सड़क सुरक्षा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार उसके नियमों का पालन करना है। लाल बत्ती पर रुकना, निर्धारित गति में वाहन चलाना, सही दिशा में वाहन चलाना, लेन का ध्यान रखना और संकेतों का पालन करना सामान्य बातें लग सकती हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन यही छोटी छोटी आदतें बड़े हादसों को रोकने में मदद करती हैं। जागृति जी, कई बार लोग सड़क खाली देखकर लाल बत्ती पार कर लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: या थोड़ी जल्दी पहुंचने के लिए गलत दिशा में वाहन चला लेते हैं। ऐसी छोटी लगने वाली लापरवाही गंभीर परिणाम ला सकती है। इसलिए नियमों का पालन केवल पुलिस की मौजूदगी में ही नहीं, बल्कि हर समय होना चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि हेलमेट और सीट बेल्ट का भी महत्व है। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग और चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हेलमेट केवल यातायात नियम पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि सिर की सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: जी जी।
0: इसी प्रकार सीट बेल्ट वाहन में बैठे लोगों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग छोटी दूरी के लिए हेलमेट या सीट बेल्ट को आवश्यक नहीं समझते, लेकिन दुर्घटना ये देखकर नहीं होती कि व्यक्ति कितनी दूर जा रहा था। इसलिए दूरी चाहे कम हो या अधिक, सुरक्षा के नियमों का पालन हमेशा जरूरी है।
1: बिल्कुल। इसी के साथ श्रोता साथियों, तेज गति नहीं, सुरक्षित गति का हमें प्रयोग करना है।
0: बिल्कुल।
1: आज जागृति जी, हम देखते हैं कि युवाओं में तेज वाहन चलाने का आकर्षण दिखाई देता है। कई बार लोग कुछ मिनट जल्दी पहुंचने के लिए वाहन की गति बढ़ा देते हैं, लेकिन सड़क पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जल्दी पहुंचना नहीं, सुरक्षित पहुंचना है।
0: जी हाँ।
1: तेज गति में चालक को अचानक सामने आई स्थिति पर प्रतिक्रिया देने के लिए कम समय मिलता है, इसलिए वाहन हमेशा सड़क, मौसम और यातायात की स्थिति के अनुसार नियंत्रित गति से चलाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि सड़क कोई रेसिंग ट्रैक नहीं है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं सड़क सुरक्षा को लेकर, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से सड़क सुरक्षा के कुछ नियम हैं जिसका हमें पालन करने की जरूरत है, वहीं बात आती है फोन से दूरी की। श्रोता साथियों, फोन ने जीवन को आसान तो बना दिया है, लेकिन वाहन चलाते समय इसका उपयोग गंभीर जोखिम पैदा करता है। एक संदेश पढ़ना, कॉल उठाना, कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन देखना भी चालक का ध्यान सड़क से हटा सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन को हाथ में लेने से बचना चाहिए। यदि किसी जरूरी कॉल का जवाब देना आवश्यक हो तो पहले वाहन को सुरक्षित स्थान पर रोकना बेहतर है। कुछ सेकंड की सावधानी ही जागृति जी जीवन भर की सुरक्षा दे सकती है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि नशे की स्थिति में वाहन चलाना अत्यंत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। नशा व्यक्ति की समझ, निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसी स्थिति में श्रोताओं, वाहन चलाना स्वयं के साथ साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है। इसलिए स्पष्ट नियम होने चाहिए, नशा किया है तो वाहन नहीं चलाना है, सुरक्षित परिवहन का विकल्प चुनना ही जिम्मेदारी है। हम देखते हैं अंजलि कि सड़क सुरक्षा में केवल वाहन चालक ही जिम्मेदार नहीं है, पैदल यात्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सड़क पार करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, जहां संभव हो जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवर ब्रिज या निर्धारित स्थान का उपयोग करना है। सड़क पार करते समय मोबाइल में व्यस्त रहना या बिना देखे सड़क पर उतर जाना भी जोखिमपूर्ण हो सकता है।
0: जी जी,
1: बच्चों को विशेष रूप से सड़क पार करने के सुरक्षित तरीके के बारे में समझाना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ बच्चों और बुजुर्ग जो हैं वो सड़क पर अपेक्षाकृत अधिक सावधानी की मांग करते हैं। वाहन चालकों को उनके आसपास गति कम रखनी चाहिए और उन्हें सुरक्षित रास्ता देना चाहिए। विद्यालयों के आसपास, बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में विशेष सावधानी आवश्यक है। बच्चों को बचपन से ही यातायात नियमों की जानकारी दी जाए तो आगे चलकर वे जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सड़क सुरक्षा की शिक्षा घर से शुरू हो सकती है। माता पिता यदि स्वयं यातायात नियमों का पालन करेंगे तो बच्चे भी उससे सीखेंगे। बच्चों को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं है कि सड़क पर सावधानी रखो, उन्हें ये भी समझाना चाहिए कि लाल बत्ती क्यों जरूरी है, हेलमेट क्यों पहनना चाहिए और सड़क पार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: परिवार में यदि सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए तो यह आदत समाज तक पहुंच सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि, यहीं अगर युवाओं की बात करें तो युवा किसी भी समाज की ऊर्जा और शक्ति होते हैं, जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हम ये बताते हैं। सड़क सुरक्षा के प्रति युवाओं की जागरूकता समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
0: बिल्कुल,
1: युवा स्वयं नियमों का पालन करें और अपने मित्रों को भी सुरक्षित वाहन चलाने के लिए प्रेरित करें। सोशल मीडिया के माध्यम से भी सड़क सुरक्षा के संदेश लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं, लेकिन संदेश केवल साझा करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। असली बदलाव तब आएगा जब संदेश हमारे व्यवहार का हिस्सा बनेगा।
0: बिल्कुल,
1: सड़क सुरक्षा में सरकार और प्रशासन की भूमिका भी जरूरी है। अच्छी सड़कें, स्पष्ट यातायात संकेत, उचित प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षित पैदल मार्ग, जेब्रा क्रॉसिंग और प्रभावी यातायात व्यवस्था दुर्घटना को कम करने में मदद कर सकती है। लेकिन केवल अच्छी सड़कें बना देना पर्याप्त नहीं है, नागरिकों को भी नियमों का पालन करना होगा। सरकार और जनता जब मिलकर काम करेंगे तभी सुरक्षित यातायात व्यवस्था विकसित हो सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि सड़क सुरक्षा को केवल किसी विशेष दिवस या अभियान तक सीमित नहीं रखना चाहिए, यह हमारी रोजमर्रा की आदत बननी चाहिए। हर बार वाहन स्टार्ट करते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का ध्यान रखना, गति नियंत्रित रखना और यातायात नियमों का पालन करना हमारी नियमित जिम्मेदारी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: सच्ची जागरूकता पोस्टर लगाने या भाषण देने से आगे बढ़कर व्यवहार में दिखाई देती है।
1: हम देखते हैं अंजलि कि सड़क पर हमारी छोटी सी सावधानी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। अगर हम किसी पैदल यात्री को रास्ता देते हैं, वाहन की गति कम करते हैं, हेलमेट पहनते हैं या मोबाइल का उपयोग रोकते हैं तो हम केवल अपना बचाव नहीं कर रहे होते बल्कि दूसरों की सुरक्षा में भी अपना योगदान दे रहे होते हैं। यही जिम्मेदार नागरिकता की पहचान है।
0: बिल्कुल जागृति जी, सड़क सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति, विभाग या संस्था की नहीं है, हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। सरकार नियम और व्यवस्था बना सकती है, पुलिस उसका पालन सुनिश्चित कर सकती है और समाज जागरूकता फैला सकता है, लेकिन सड़क पर व्यवहार हमें स्वयं तय करना होगा। श्रोता साथियों, हमें इस बात को मानना होगा कि हमें जल्दबाजी से अधिक सुरक्षा को महत्व देना है, नियमों को बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा कवच समझना है, सड़क पर अपने साथ साथ दूसरों के जीवन का भी सम्मान करना है। याद रखें, सड़क पर कुछ मिनट बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन को सुरक्षित रखना। मंजिल तक पहुंचना तभी सफल होता है जब हम सुरक्षित पहुंचते हैं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जागृति जी, सुरक्षित सड़क केवल अच्छी व्यवस्था से नहीं बनती बल्कि जिम्मेदार नागरिकों से बनती है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए आज ही हम ये नियम बनाएं कि हम सभी नियमों का पालन करेंगे, सावधानी से चलेंगे, दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि सड़क पर हमारी जिम्मेदारी केवल अपनी जिंदगी तक सीमित नहीं है, हमारी सावधानी किसी और की जिंदगी भी बचा सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, आप देख पा रहे हैं कि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा हम जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ,

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनो, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है सुबह की दिनचर्या और स्वास्थ्य को लेकर।
0: जी हाँ,
1: हम सभी जानते हैं साथियों कि हम अक्सर अपने पूरे दिन को बेहतर बनाने के लिए बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं। अच्छा भोजन करेंगे, व्यायाम करेंगे, समय पर काम करेंगे, तनाव कम करेंगे और पर्याप्त आराम करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सुबह की शुरुआत कैसी होती है? इसका असर हमारे पूरे दिन पर पड़ सकता है। जरा सोचिएगा कि सुबह आँख खुलते ही अगर हम जल्दबाजी में उठे, मोबाइल देखने लगे, नाश्ता छोड़ दे और बिना किसी योजना के दिन शुरू कर दे तो क्या हमारा मन और शरीर पूरे दिन सहज रह पाएगा? वहीं अगर मनीषा सुबह का समय थोड़ा व्यवस्थित हो, समय पर उठना, शरीर की स्वच्छता, कुछ देर खुली हवा में रहना, हल्की शारीरिक गतिविधियां, पौष्टिक नाश्ता और दिन के कामों की योजना बनाना तो दिन की शुरुआत अधिक व्यवस्थित तरीके से होती है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो आज के कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि सुबह की दिनचर्या और स्वास्थ्य का क्या महत्व है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
2: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सुबह की दिनचर्या और हमारा स्वास्थ्य।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सुबह की शुरुआत श्रोता साथियों जैसी होती है, उसका प्रभाव हमारे पूरे दिन या काम पर पड़ता है। यदि हम सुबह जल्दी उठकर अपने शरीर और मन को समय दे, स्वच्छता का ध्यान रखें, पौष्टिक भोजन करें और कुछ समय शारीरिक गतिविधियों में लगाएं, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत है वो सकारात्मक तरीके से की जा सकती है।
1: बिल्कुल मनीषा, सुबह की दिनचर्या आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम हमारे श्रोता साथियों को बताएं। तो श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि सुबह का समय ऐसा समय होता है जब हमारा शरीर रात के आराम के बाद धीरे धीरे सक्रिय होता है। इसलिए मनीषा, सुबह की शुरुआत जल्दबाजी और तनाव के बजाय शांति और अनुशासन से करना अच्छी आदत हो सकती है। सुबह की अच्छी दिनचर्या का मतलब यह नहीं है श्रोता साथियों कि हर व्यक्ति को बिल्कुल एक ही समय पर उठना चाहिए या हर किसी को एक जैसी गतिविधि करनी चाहिए।
0: जी हाँ।
1: हमारी दिनचर्या हमारी उम्र, काम, स्वास्थ्य, मौसम और जिम्मेदारी के अनुसार अलग हो सकती है, लेकिन कुछ सामान्य आदतें ऐसी हैं जिन्हें अपने जीवन में शामिल किया जा सकता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ बात करें अगर सुबह उठते ही पानी पीने की आदत की, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि सुबह उठने के बाद पानी पीना एक सरल और अच्छी आदत हो सकती है। रात भर सोने के बाद शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। पर्याप्त पानी पीना शरीर में सामान्य जल संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि सुबह सामान्य हल्का गुनगुना पानी अपनी सुविधा के अनुसार लिया जाए श्रोता साथियों, या नींबू पानी लिया जाए या शहद वाला पानी लिया जाए, तो यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है।
1: बिल्कुल,
0: दिन भर की प्यास के अनुसार श्रोता साथियों पर्याप्त पानी पीते रहना हमें चाहिए। बहुत अधिक मीठे पेय या शर्करा वाले पेयों की जगह श्रोता साथियों पानी को प्राथमिकता देना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, उठते ही हमें मोबाइल से दूरी बनानी है।
0: जी हाँ,
1: यानी कि आज मोबाइल हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुका है, लेकिन श्रोता साथियों सुबह आँख खुलते ही मोबाइल से सोशल मीडिया, वीडियो या संदेश देखने की आदत हमारी सुबह का काफी समय ले सकती है। इसलिए कोशिश करें कि जागने के तुरंत बाद मोबाइल देखने के बजाय कुछ समय खुद के लिए रखें। खिड़की या आंगन में जाएं, वातावरण को देखें, कुछ गहरी और सामान्य सांस लें और अपने दिन की शुरुआत शांत मन से करें। एक छोटी सी आदत, सुबह का पहला समय मोबाइल नहीं खुद को दें। इसी के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें, यानी कि मनीषा सुबह उठने के बाद व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान देना बेहद जरूरी है। दांतों की सफाई करना, चेहरा धोना, हाथ पैर साफ करना, नियमित स्नान करना, साफ कपड़े पहनना हमारी दैनिक स्वच्छता का हिस्सा है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग सुबह जल्दी खेत, पशुओं की देखभाल या दूसरे कामों के लिए निकल जाते हैं, वहां भी व्यक्तिगत स्वच्छता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: साथियों, स्वच्छ शरीर केवल दिखने के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें आगे भी हमारे श्रोता साथियों से ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि मनीषा, हमने गीत से पहले ढेर सारी बातों को जाना, यही सुबह थोड़ी देर शारीरिक गतिविधियां भी हमें करनी है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम केवल जिम जाने का नाम नहीं है। अगर आपके पास जिम की सुविधा नहीं है तो कोई समस्या नहीं, आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ देर पैदल चल सकते हैं, हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, घर के आसपास टहल सकते हैं या रोजमर्रा के कामों में सक्रिय रह सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार हल्की गतिविधियां करें और यदि कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो चिकित्सीय सलाह के अनुसार व्यायाम करें। याद रखिए, शरीर को जितना आराम चाहिए उतनी ही जरूरत उचित गतिविधियों की भी है। अगर
1: हाँ।
0: आपके घर के आसपास श्रोता साथियों पेड़ पौधे, खेत, आंगन या खुली जगह है तो सुबह कुछ समय वहाँ बिताना मन को अच्छा महसूस करा सकता है। पक्षियों की आवाज सुनना, पौधों को देखना, आंगन में बैठना या थोड़ी देर शांत वातावरण में रहना दिन की शुरुआत को सुखद बना सकता है। इसके लिए किसी महंगे संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है मनीषा। सुबह का शांत वातावरण हमारे मन को दिन की भागदौड़ के लिए तैयार करने का अवसर देता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें पौष्टिक नाश्ता हमारे लिए क्यों जरूरी है इसकी, तो साथियों हम देखते हैं कि सुबह का नाश्ता दिन के महत्वपूर्ण भोजन में से एक होता है। रात भर भोजन न करने के बाद श्रोता साथियों सुबह हमारे शरीर की ऊर्जा वो कम हो जाती है। हम देखते हैं कि नाश्ते में अलग अलग प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं, जैसे दलिया, पोहा, उपमा, दाल, अंकुरित अनाज, दूध, दही या फल, या साथ ही श्रोता साथियों सब्जी या कोई अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ ही उन्हें भी हम शामिल कर सकते हैं। नाश्ता श्रोता साथियों हमेशा बहुत भारी या बहुत तला हुआ नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि संतुलित भोजन लेना हमारे लिए और अधिक लाभकारी हो सकता है। स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करना हमारे लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
0: बिल्कुल मनीषा, सुबह का समय केवल काम करने का समय नहीं है, परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मिनट बातचीत करना भी जरूरी है। बच्चों से पूछें आज स्कूल में क्या है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है। बुजुर्गों का हाल पूछें, पति पत्नी आपस में दिन के जरूरी कामों की जानकारी साझा कर सकते हैं। इन छोटी सी बातचीत से घर के काम व्यवस्थित हो सकते हैं और परिवार में संवाद भी बढ़ सकता है। साथियों सुबह अगर हम अपने जरूरी कामों की सूची बना लें तो दिन को व्यवस्थित करना आसान हो सकता है। जैसे कि आज खेत का कौन सा काम करना है, बच्चों को स्कूल कब भेजना है, बाजार से क्या लाना है, किस जरूरी व्यक्ति से बात करनी है और आज अपने लिए कौन सा काम करना है। हर काम को एक साथ करने की कोशिश करने के बजाय जरूरी कामों को प्राथमिकता दे, इससे भागदौड़ और भूलने की संभावनाएं कम हो सकती हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वास्थ्य और स्वच्छता का संबंध है वो बहुत गहरा है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह घर की सफाई, पीने के पानी की स्वच्छता, भोजन बनाने की जगह की सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना भी साथियों हमारे लिए बहुत जरूरी है। कूड़ा हमेशा श्रोता साथियों निर्धारित स्थान पर ही हमें डालना है। घर और आसपास पानी जमा हो तो उसे बाहर निकाल के वहाँ सफाई करनी है और विशेष रूप से श्रोता साथियों बरसात के मौसम में हमें इन सब का ध्यान रखना है। स्वच्छ वातावरण बीमारियों के फैलाव को कम करने में सहायता कर सकता है, इसलिए श्रोता साथियों सुबह की दिनचर्या केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि अपने आसपास के वातावरण की देखभाल उसमें शामिल होनी चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, हम अपने शरीर की सफाई तो करते हैं लेकिन मन की सफाई के बारे में अक्सर नहीं सोचते। सुबह कुछ मिनट शांत बैठना, प्रार्थना करना, ध्यान करना, सकारात्मक विचार पढ़ना या बस अपने दिन के बारे में शांत मन से सोचना मन को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। अगर सुबह ही मन तनाव, चिंता और नकारात्मक खबरों में उलझ जाए तो पूरा दिन उसी भावना के साथ शुरू हो सकता है। इसलिए सुबह खुद से एक सकारात्मक बात कहें कि आज मैं अपने जरूरी कामों को शांत मन से पूरा करूंगा। साथियों गांव का जीवन शहरों से अलग होता है, यहाँ सुबह कई लोगों की शुरुआत सूरज निकलने से पहले ही हो जाती है। किसी को पशुओं की देखभाल करनी होती है, किसी को खेत जाना होता है, तो किसी महिला को घर और परिवार के काम संभालने होते हैं, तो बच्चे स्कूल की तैयारी करते हैं। ऐसी स्थिति में सुबह की दिनचर्या बनाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन दिनचर्या का मतलब यह नहीं है कि हम हर काम के लिए अलग से बहुत समय निकालें। छोटी छोटी आदतों को रोज के कामों में शामिल किया जा सकता है। पशुओं को चारा देने से पहले हाथ साफ करें, खेत जाने से पहले पानी, भोजन की व्यवस्था करना, बच्चों के लिए पौष्टिक नाश्ता तैयार करना और काम के बीच पर्याप्त पानी पीना, ये सभी स्वस्थ दिनचर्या का हिस्सा है। श्रोता साथियों आप सभी को कहना चाहेंगे कि स्वस्थ जीवन की शुरुआत हमेशा किसी बड़ी चीज से नहीं होती है। कभी कभी बदलाव की शुरुआत हमारे घर के आंगन से होती है, सुबह की पहली किरण से होती है और हमारी छोटी सी आदत से होती है। श्रोता साथियों, सुबह का समय हमें हर दिन एक नया अवसर देता है
1: जी हाँ।
0: अपने शरीर को सक्रिय रखने का, मन को शांत रखने का, परिवार के साथ जुड़ने का और अपने कामों को बेहतर तरीके से करने का।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए अपने सुबह को बोझ न बनाएं, उसे अपने स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की पहली सीढ़ी बनाएं। याद रखिए, सुबह जैसी होगी दिन को वैसी दिशा देना आसान होगा, इसलिए अपने सुबह को स्वस्थ, शांत और व्यवस्थित बनाइए। इसी संदेश के साथ कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से हम विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी बिल्कुल।
0: तो इस विषय के लिए, राय सुझाव के लिए आगे हम कार्यक्रम में आपको हमारा पता अवश्य बताएंगे, लेकिन अभी मन कर रहा है मनीषा एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाग धरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर और स्वागत करती हूं श्रोता साथियों आप सभी का हमारे आज की विशेष कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि सपनों की उड़ान कार्यक्रम जो हमारा है वो हमारे लिए सबसे प्रेरणादायी कार्यक्रम है, क्योंकि हम जो युवा साथी हैं वो कहीं ना कहीं हर बार हर किसी चीज को लेकर परेशान ही रहते हैं, क्योंकि वर्तमान का हमारा चलन ही ऐसा हो गया है, हमारी जीवन शैली ही ऐसी हो गई है कि हम हर वक्त परेशान ही रहते हैं। तो कार्यक्रम सपनों की उड़ान में श्रोता साथियों हम आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिनके बारे में जानकर आपको अंदर से आत्मविश्वास भी मिलता है और आप अपने जीवन में आगे भी बढ़ पाते हैं। तो आज भी श्रोता साथियों ऐसा ही एक नया विषय मैं कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे सकारात्मक सोच की शक्ति की, क्योंकि श्रोता साथियों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारी सोच का एक अलग ही महत्व होता है। देखते हैं ना कि ऐसा कहा भी जाता है कि जैसी सोच होती है वैसा ही हमारा मन होता है, और जैसा हमारा मन होता है वैसा हमारा तन होता है। तो श्रोता साथियों हमारे पूरे जीवन की जो गाड़ी है वो हमारी कह सकते हैं कि सोच पर ही टिकी हुई है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। हम जानेंगे साथियों कि सकारात्मक सोच क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो इसके कौन कौन से फायदे हमें होने वाले हैं। तो मजा बहुत आएगा कार्यक्रम में साथियों, ढेर सारी बातें होंगी, गीत संगीत भी होंगे। तो श्रोता साथियों गीत संगीत से मुझे याद आया कि पहले मैं आपको शुरुआत में गीत संगीत सुनवा देती हूँ, फिर हम बातचीत की फिर से शुरुआत करेंगे। तो आइए दोस्तों इस गीत के साथ मनोरंजन करते हैं और फिर हम हमारी बात को फिर से जारी रखेंगे।

प्यारे श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है सपनों की उड़ान कार्यक्रम में। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले मैंने आपको विषय तो बता ही दिया कि आज हम बात कर रहे हैं सकारात्मक सोच की शक्ति को लेकर। साथियों, जीवन में हम कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों से जरूर गुजरते हैं जब हमें सब कुछ कठिन लगता है। देखते हैं कि कभी पढ़ाई का दबाव है, कभी काम की चिंता है, कभी भविष्य की अनिश्चितता। साथ ही साथियों, ऐसे कई कारण होते हैं जो मन को हमारे कमजोर कर देते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है, और वह है हमारी सकारात्मक सोच की शक्ति। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दोस्तों सकारात्मक सोच क्या है और हमारे जीवन को ये कैसे बदल सकती है इसको लेकर, और हम इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं। अगर साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सकारात्मक सोच होती क्या है, तो साथियों सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि जीवन में कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी, बल्कि समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती ही है। साथियों, सकारात्मक सोच का असली अर्थ ये है कि हम कठिन परिस्थितियों में खुद को उम्मीद और समाधान के साथ कैसे जीवित रख सकते हैं, और उन्हीं कठिन परिस्थितियों में हम उम्मीद के साथ समाधान को कैसे खोजते हैं। श्रोता साथियों, क्योंकि जब इंसान सकारात्मक सोच रखता है श्रोता साथियों, तो वह हर समय को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखता है। ऐसे तो साथियों कई लोग ये भी मानते हैं कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है, और हम देखें तो ये बात सत्य भी है, क्योंकि श्रोता साथियों हमने हमारे बड़े बुजुर्गों से भी ये सुना है कि जीवन एक संघर्ष है। अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो समस्याओं का सामना करना तो हमें सीखना ही होगा। क्योंकि श्रोता साथियों, ऐसा कहा जाता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम सही समय पर ये सोचते रहें कि मैं नहीं कर सकता, ये बहुत ही मुश्किल है, मेरे पास क्षमता नहीं है इसे करने की, तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास इससे कमजोर होने लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर इसके विपरीत हम ये सोचे कि मैं कोशिश कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसी ढेर सारी बातें हैं साथियों, तो वही सोच हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। इसलिए ये कहा जाता है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बनता जाता है। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में भी मैंने आपको बताया कि जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हम बनते जाते हैं, जैसा हमारा मन है वैसा हमारा तन है साथियों। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम अपने अंदर नकारात्मकता को भरते ही जाएंगे तो हमारा स्वभाव इससे बदल जाएगा। और देखेंगे श्रोता साथियों कि अगर हम हमारे अंदर नेगेटिविटी को लेकर घूमते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पास आना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में यही चलेगा कि इससे कुछ भी पूछो या इसके बारे में कुछ भी बात करो, ये हमारी बात को सहमत होगा ही नहीं, ये तो उल्टी बात ही करेगा। तो श्रोता साथियों, इन सभी बातों का एक ही मतलब निकलता है कि हमें हमारे जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाना है, क्योंकि सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है साथियों जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी, हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचने में मदद करेगी। साथ ही हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच के माध्यम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो श्रोता साथियों, जैसा कि बातें तो कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे बहुत ही अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे। आगे भी श्रोता साथियों ढेर सारी बातें हम करेंगे कि सकारात्मक सोच के क्या फायदे होते हैं, लेकिन अभी हम मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में, क्योंकि जब कार्यक्रम में हम बात कर ही रहे हैं साथियों, तो मनोरंजन करना भी जरूरी है। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों बातें बहुत अच्छी चल रही थी, हम जान रहे थे कि हमारे जीवन में सकारात्मक सोच का क्या महत्व है। अगर इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं और गीत से पहले जैसा कि साथियों हमने जाना था कि सकारात्मक सोच का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम जैसा कि जान पाए थे कि जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो जो असंभव कार्य भी है वो भी हमें संभव लगने लगते हैं। हमारे अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जागता है साथियों, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि ये कार्य तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन वहीं इसके विपरीत देखें, हमारे अंदर नकारात्मक सोच है तो हमें हर चीज मुश्किल लगेगी। हम अगर संघर्ष कर रहे हैं साथियों तो उसमें भी हमें बार बार असफलता मिलेगी और उस असफलता की वजह से श्रोता साथियों हमारे अंदर निराशा आ जाती है, जिसके कारण हम आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है, बल्कि हमारे मन में ये बात घर कर जाती है कि मुझसे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सब भी मुझे यही कहते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि लोग तो बातें करेंगे। श्रोता साथियों, आपने एक बात भी सुनी होगी कि लोगों का काम है कहना, लेकिन श्रोता साथियों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि जिंदगी हमारी है, हमें क्या करना है वो हमें तय करना है। हम नकारात्मक सोच लेकर घूमते हैं तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि नुकसान ही नुकसान है, वहीं अगर हम सकारात्मक सोच को लेकर बैठे हैं, हमारे अंदर सकारात्मक सोच है श्रोता साथियों, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जीवन

सकारात्मक लोग भी और नकारात्मक लोग भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप पे ये निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में किसके गुणों को शामिल करते हैं। अगर आप श्रोता साथियों नकारात्मक लोगों की बातों को समझते हैं, उनकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, उनकी बातों में रुचि रखते हैं, तो आपके अंदर भी नेगेटिविटीज ही आएंगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आप सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी संगति में रहते हैं श्रोता साथियों, तो आपके अंदर सकारात्मक चीजें आएंगी। तो ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि श्रोता साथियों आपको अपने जीवन में सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ ही संगति बनानी चाहिए, क्योंकि यही साथियों हमारे जीवन को सुखद, खुशहाल और सफल बना सकता है। तो इन्हीं आशाओं के साथ दोस्तों अब मैं कार्यक्रम के माध्यम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो जरूर लूंगी साथियों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं श्रोता साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, हमारा पता है कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, आज हम कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसका संबंध आज लगभग हर परिवार से है।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ दोस्तों, आज मोबाइल फोन हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बन गया है। पैसे भेजना हो, बिजली पानी का बिल जमा करना हो, ऑनलाइन खरीदी करनी हो, बैंक का काम करना हो या किसी से बातचीत करनी हो, कई काम हम घर बैठे मोबाइल से कर लेते हैं।
0: बिल्कुल
1: डिजिटल तकनीक ने कशिश हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ कुछ खतरे भी बढ़ गए हैं। इन्हीं खतरों में से एक है ऑनलाइन ठगी। श्रोता साथियों, कभी किसी के मोबाइल पर बैंक अधिकारी बनकर फोन आता है तो कभी कहा जाता है कि आपका खाता बंद होने वाला है।
0: जी जी।
1: कभी कोई लिंक भेजकर कहा जाता है कि इस पर क्लिक करके अपना पुरस्कार प्राप्त करें। कभी नौकरी लगाने का साझा दिया जाता है तो कभी किसी रिश्तेदार या परिचित की आवाज में मदद के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में सवाल ये है श्रोता साथियों कि क्या ऑनलाइन ठगी से बचा जा सकता है, ठगों की चाल को कैसे पहचाना जाए और अगर गलती से ठगी हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए। तो आज कार्यक्रम में कशिश बातें इस विषय पर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसे कि दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे बीच जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन ठगी से बचे गांव के डिजिटल सावधानियों को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी, इससे पहले भी हम जान पाए थे कि आज का युग जो है वो हमारा विज्ञान और तकनीक का युग है। मोबाइल फोन, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है।
1: जी हाँ
0: साथियों, गाँव में अब भी लोग मोबाइल के माध्यम से बैंकिंग, ऑनलाइन खरीदारी, बिजली पानी के बिल का भुगतान, सरकारी योजनाओं की जानकारी, पैसे भेजने और प्राप्त करने जैसे अनेक कार्य करने लगे हैं। अंजलि जी, डिजिटल माध्यमों के कारण समय और मेहनत दोनों की बचत होती है।
1: जी जी।
0: लेकिन जहाँ डिजिटल सुविधाओं के अनेक लाभ हैं, वहीं इनके साथ कुछ खतरे भी जुड़े हुए हैं।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि आजकल ऑनलाइन ठगी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है हमारे बीच, जो कि श्रोता साथियों कह सकते हैं कि एक गंभीर समस्या है। ऐसे में ठग लोग जो है वो फोन करके, फर्जी संदेश भेजकर, नकली लिंक भेजकर या किसी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति का रूप धारण करके उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, जैसा कि आपने भी बताया था अंजलि जी।
1: बिल्कुल।
0: कई बार थोड़ी सी लापरवाही के कारण दोस्तों, व्यक्ति अपने जीवन भर की जमा पूंजी तक खो देता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि ऑनलाइन ठगी का मतलब है इंटरनेट, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, डिजिटल भुगतान और अन्य जो ऑनलाइन माध्यम है उनका इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति से पैसे या निजी जानकारी धोखे से हासिल करना।
0: बिल्कुल।
1: ठग अक्सर लोगों के डर, लालच, जबर जल्दबाजी और भरोसे का फायदा उठाते हैं। उदाहरण के लिए अगर कहें तो कोई फोन करके कहता है कि आपका बैंक खाता बंद हो गया है। कोई कहता है आपका KYC पूरा नहीं हुआ है, अभी इस पर क्लिक करके कीजिए, या आपने इनाम जीता है, इनाम पाने के लिए पहले कुछ पैसा जमा करना होगा, या आपके बेटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत पैसे भेजिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति घबरा जाता है और बिना पूरी जानकारी जांचे पैसे भेज देता है।
0: बिल्कुल।
1: वही यही क्षण होता है कशिश, जिस समय ठग जो है वो फायदा उठा लेता है। श्रोता साथियों, बात करें कि ठग लोगों को फंसाते कैसे हैं, तो श्रोता साथियों, ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम इन तरीकों को पहचानें। जैसे कि बैंक अधिकारी बनकर फोन करना। ठग फोन करके कशिश खुद को बैंक कर्मचारी बताते हैं और कहते हैं कि आपका ATM बंद हो गया है।
0: जी जी।
1: आपका बैंक खाता बंद हो गया है, KYC अपडेट नहीं है, आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है। इसके बाद वे OTP, पैन, CVV, पासवर्ड, बैंक की दूसरी गोपनीय जो जानकारी है वो मांग सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: याद रखिए श्रोता साथियों, बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन पर हमें नहीं देनी चाहिए।
0: जी
1: इसी
0: हाँ।
1: के साथ फर्जी लिंक भेजना, कभी मोबाइल पर संदेश आता है आपका बिजली बिल बकाया है, आपका पार्सल रुका हुआ है, आपके बैंक खाता जो है वो अपडेट हो रहा है, साथ में एक लिंक दिया जाता है। ठग चाहते हैं कि हम बिना सोचे उस पर क्लिक करके उस तक सभी जानकारी पहुंचाते हैं। इसलिए अनजान संदेश या लिंक पर क्लिक करने से पहले रुकिए और सोचिए कि क्या संदेश किसी ने भेजा है, क्या मैंने वास्तव में कोई सेवा मांगी थी, या यह आधिकारिक माध्यम है या नहीं। इन सारी चीजों के माध्यम से हमें हमारी जो चीजें हैं उन्हें समझने की जरूरत है। अगर इस तरीके का कोई फोन भी आता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा जो जिस भी बैंक में खाता है वहां पर जाकर हम पता कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथ ही रिश्तेदार और परिचित बनकर भी ठगी की जाती है। जैसे कि कभी कभी ठग फोन करके कहते हैं

0: साथियों कि वे आपके रिश्तेदार या परिचित हैं और उन्हें तुरंत पैसों की जरूरत है। वे किसी दुर्घटना, बीमार या परेशानी का बहाना भी बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में श्रोता साथियों तुरंत पैसे भेजने के बजाय उस व्यक्ति से दूसरे माध्यम से संपर्क करके उसकी पहचान की पुष्टि आपको करनी चाहिए।
1: जी जी।
0: साथ ही कुछ ठग ऐसा भी कहते हैं अंजलि जी कि आपने लाखों रुपए की लॉटरी जीत ली है, इनाम प्राप्त करने के लिए आप पंजीकरण कर सकते हैं या किसी नाम पर पैसे मांगते हैं।
1: जी जी बिल्कुल।
0: बिना किसी प्रतियोगिता में भाग लिए दोस्तों अचानक मिलने वाले बड़े इनाम के संदेशों पर विश्वास आपको नहीं करना है और लालच जो है वो ऑनलाइन ठगी का सबसे बड़ा हथियार ही होता है।
1: जी बिल्कुल।
0: ऐसे में हमारे श्रोता साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि वे इन सभी चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि जब हम किसी भी ठगी या ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं तो बाद में हमारे पास पछताने के अलावा और कुछ चारा नहीं बचता है।
1: जी हाँ।
0: हम अंजलि जी निराश हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इन सब चीजों के बारे में पहले से ही अवगत हो, हमारे श्रोता साथी अगर इन सब चीजों के बारे में पहले से ही जानते हो, इन नियमों के बारे में जानते हो, तो वे ऑनलाइन ठगी का शिकार नहीं होंगे।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि अगर नियमों की बात करें तो श्रोता साथियों पहला नियम होता है OTP, ATM पिन, UPI पिन और पासवर्ड हमें किसी को नहीं बताना है। दूसरा नियम ये है कि अनजान लिंक पर कभी क्लिक नहीं करना है। तीसरा नियम है किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है श्रोता साथियों। चौथा नियम ये है कि किसी व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन शेयर या रिमोट एक्सेस देने वाला ऐप का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। पांचवा नियम, UPI से पैसे प्राप्त करने के लिए UPI पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति पैसे प्राप्त करने के नाम पर UPI पिन डालने को कहता है तो सावधान आपको हो जाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: छठा नियम अंजलि जी हमारे श्रोता साथियों को ध्यान में रखना है वो ये है कि पासवर्ड मजबूत रखना है और किसी के साथ साझा नहीं करना है।
1: जी हाँ।
0: सातवां नियम ये दोस्तों कि मोबाइल फोन में स्क्रीन लॉक अवश्य रखे। आठवां नियम ये कि बैंक खाते में मोबाइल नंबर सही और सक्रिय रखे ताकि लेन देन के संदेश समय पर मिल सके।
1: बिल्कुल।
0: नौवां नियम ध्यान रखने का ये है दोस्तों कि बैंक खाते और डिजिटल लेन देन की जानकारी समय पर जांचते रहे और किसी भी संदिग्ध घटना की जानकारी तुरंत अपने परिवार के विश्वसनीय व्यक्ति और संबंधित बैंक या आधिकारिक संस्था को दें।
1: बिल्कुल। हम देखते हैं कि बहुत सी बार इनाम और लॉटरी का लालच दिया जाता है कि आपने 5 लाख की लॉटरी जीती है, आपका नाम विशेष पुरस्कार के लिए चुना गया है।
0: जी जी।
1: इनाम लेने के लिए पहले प्रोसेसिंग फीस जमा करें। ऐसा संदेश सुनकर किसी को भी खुशी हो सकती है, लेकिन यही सावधान रहने की जरूरत है। बिना कोई लॉटरी खरीदे आपको कोई आप लॉटरी कैसे जिता सकता है, उस पर तुरंत विश्वास न करें। आजकल नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं को भी ऑनलाइन ठगी का निशाना बनाया जाता है। कहा
0: हाँ।
1: जाता है घर बैठे काम मिलेगा, हर महीने 30,000 कमाइए, सरकारी नौकरी लगवा देंगे, पहले रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें। युवाओं को चाहिए कि किसी भी नौकरी या भर्ती के लिए केवल आधिकारिक स्रोत की जानकारी पर भरोसा करें, नौकरी के नाम पर पैसा मांगने वालों से सावधान रहें।
0: बिल्कुल अंजलि जी। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से बातें कर ही रहे हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि कभी कभी सोशल मीडिया या जो मैसेजिंग ऐप होते हैं उस पर किसी परिचित के नाम और फोटो से फर्जी अकाउंट बनाकर पैसे मांगे जाते हैं। संदेश आता है, मैं मुश्किल में हूँ, अभी तुरंत पैसे भेज दूँ। ऐसी स्थिति में केवल फोटो या नाम देखकर भरोसा न करें। जिस व्यक्ति के नाम से पैसे मांगे जा रहे हैं उसे उसके पुराने नंबर पर फोन करके पुष्टि करें। साथियों, एक बात गांठ बांध लीजिए कि ओटीपी किसी के साथ साझा नहीं करना है, चाहे सामने वाला खुद को बैंक अधिकारी बताए, पुलिस अधिकारी बताए, कंपनी का कर्मचारी बताए या कोई परिचित बनकर बात करें। ओटीपी आपकी सुरक्षा के लिए होता है। इसी तरह आपका एटीएम, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड और अन्य गोपनीय बैंकिंग जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं कि ठग ये समझते हैं कि कौन सा व्यक्ति तकनीक की जानकारी कम रखता है और उसे आसानी से विश्वास में कैसे लिया जा सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, गांव के हर व्यक्ति को डिजिटल सुरक्षा की बुनियादी जानकारी होना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं अंजलि जी कि ये जानकारी केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं, किसान, मजदूर, दुकानदार, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा, हर व्यक्ति को ऑनलाइन ठगी से बचने के तरीकों के बारे में जानना चाहिए। जैसा कि हम गीत से पहले कुछ नियमों के बारे में जान पाए थे, यही हमारे दोस्तों को हम बताना चाहेंगे कि बुजुर्गों और परिवार के सदस्यों को हम कह सकते हैं कि डिजिटल ठगी के बारे में पता होना चाहिए। साथियों, ये भी पता होना चाहिए कि डिजिटल ठगी होती क्या है और इससे बचाव को लेकर क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। अब यही प्रश्न ये है अंजलि जी कि अगर हमारे साथ कभी ठगी हो जाए तो हम क्या करें।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों, अगर किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ठगी हो जाती है तो घबराना नहीं चाहिए। जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई की जानी चाहिए और सबसे पहले संबंधित बैंक या भुगतान सेवा को तुरंत सूचना देनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: लेन देन से संबंधित जानकारी और संदेश सुरक्षित रखे। ठगी के मामले की शिकायत संबंधित साइबर अपराध व्यवस्था या स्थानीय पुलिस के माध्यम से श्रोता साथियों आप कर सकते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, आज गाँव में भी UPI और QR कोड से भुगतान बहुत तेजी से बढ़ गया है। श्रोता साथियों, ये सुविधा बेहद उपयोगी है, लेकिन इसके इस्तेमाल में सावधानी भी जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखें कि पैसे प्राप्त करने के लिए सामान्यतः UPI पिन डालने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई कहता है कि आपको पैसे मिलने हैं या QR कोड स्कैन करके आपका UPI पिन डालिए तो रुक जाइए। किसी QR कोड को स्कैन करने से पहले यह समझें कि उससे भुगतान हो रहा है या पैसे प्राप्त नहीं।
1: जी जी
0: श्रोता साथियों, आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन सोशल मीडिया पर हर प्रोफाइल असली हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए अजनबी व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से पहले सोचें। अपनी निजी जानकारी, बैंक संबंधी जानकारी, दस्तावेज और संवेदनशील तस्वीरें अनजान लोगों के साथ साझा न करें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट में मजबूत पासवर्ड रखें और जहां उपलब्ध हो वहां दो स्तरीय सुरक्षा यानी कि 2 फैक्टर वाली जो चीजें हैं उनका हमें उपयोग करने की जरूरत है।
1: जी हाँ,
0: श्रोता साथियों, ठग अक्सर व्यक्ति को सोचने का समय नहीं देते। वे कहते हैं अभी पैसे भेजिए, अभी OTP बताइए, अभी लिंक खोलिए, अभी नहीं किया तो खाता बंद हो जाएगा। याद रखिए कि घबराहट और जल्दबाजी ठगों का हथियार है। अगर कोई आपको डराकर या दबाकर इन सारी चीजों को करने की कोशिश करता है तो पहले फोन काटिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह लीजिए, फिर ही अपने कार्य को हमें शुरू करने की जरूरत है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथी श्रोता साथियों, हम कहना चाहेंगे कि गांव में डिजिटल सुरक्षा केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे समुदाय को मिलकर जागरूक होना होगा। श्रोता साथियों,
0: बिल्कुल,
1: ग्राम पंचायत में समय समय पर डिजिटल सुरक्षा संबंधित बैठकें आयोजित की जाती है। विद्यालयों में भी अंजलि जी विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी जा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: स्वयं सहायता समूह, किसान समूह और ग्रामीण युवाओं के माध्यम से घर घर तक इसके प्रति जागरूकता पहुंचाई जा सकती है। गांव की दुकानों, पंचायत भवन, सार्वजनिक स्थानों पर सरल भाषा में साथियों डिजिटल सावधानियों के पोस्टर लगाए जा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लोगों को समझाना जरूरी है कि डिजिटल सुरक्षा के लिए बहुत कठिन तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।
0: जी जी,
1: कुछ सरल नियमों का पालन करके अधिकार दौरान सामान्य ठगी से बचाया जा सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी के समय में ये जो समस्या है वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत से लोग इन सारी चीजों को लेकर जागरूक हो चुके हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों को इन सारी चीजों के प्रति जागरूकता नहीं है वो लोग फिर भी ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कभी भी इन सारी चीजों को लेकर हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है, हमें ये सोचना है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि आपके बच्चे के साथ ये हुआ है, किसी का बच्चा बाहर पढ़ता है तो उनके माता पिता को ऐसी खबर मिलती है तो परेशान हो जाते हैं कि कहीं वास्तव में मेरे बच्चे के साथ ऐसा तो नहीं हुआ। उस समय वो कुछ भी नहीं सोचते हैं और तुरंत पैसे या कोई भी जरूरी जानकारी है वो उन्हें दे देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो हमें ये समझने की जरूरत है कि कोई भी समस्या है तो उससे पहले हमें सोच विचार करना है, थोड़ी देर रुकना है कि क्या वास्तव में ऐसा है। अगर हमारे बच्चे के साथ कुछ हुआ है तो हमें तुरंत हमारे बच्चे के हॉस्टल में बच्चे को फोन करके पूछने की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: उससे हमें सच पता चल जाएगा और हम ठगी से बच जाएंगे।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हमारी बातें श्रोता साथियों से बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी ये बातें हम जारी रखेंगे साथियों।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ,
1: तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
0: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू।

ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि ऑनलाइन ठगी और सावधानियों को लेकर श्रोता साथियों, गीत से पहले भी हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही थी, यही आपसे कहना चाहेंगे कि जैसा कि डिजिटल तकनीक आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है,
1: बिल्कुल,
0: मोबाइल और इंटरनेट ने गाँव के लोगों को बैंकिंग, शिक्षा, सरकारी सेवाओं और व्यापार से जोड़कर अंजलि जी अनेक अवसर प्रदान किए हैं, लेकिन डिजिटल सुविधाओं का सुरक्षित उपयोग करना भी उतना ही जरूरी हो चुका है। दोस्तों, ऑनलाइन ठग अक्सर हमारे डर, लालच, जल्दबाजी और विश्वास का फायदा उठाते हैं, इसलिए किसी भी अनजान फोन संदेश या लिंक पर तुरंत विश्वास हमें नहीं करना है।
1: जी जी।
0: OTP, पिन, पासवर्ड और बैंक संबंधित गोपनीय जानकारी कभी साझा नहीं करनी है। किसी भी संदिग्ध घटना में तुरंत उचित संस्था से संपर्क हमें करना है। हमें यह संदेश हर घर और हर गांव तक पहुंचाना चाहिए अंजलि जी, कि डिजिटल सुविधा अपनानी है लेकिन सावधानी के साथ।
1: बिल्कुल,
0: अनजान लिंक से बचना है, गोपनीय जानकारी नहीं देनी है और सोच समझकर डिजिटल लेन देन करें और ऑनलाइन ठगी को रोकने में अपना योगदान दें।
1: जी हाँ कशिश, ऑनलाइन सुरक्षा केवल मोबाइल चलाने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, घर के सभी सदस्यों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: विशेषकर बुजुर्गों को समझाएं कि बैंक, पेंशन, बिजली बिल या किसी योजना के नाम पर फोन आए तो बिना पुष्टि किए कोई जानकारी न दे। बच्चों को भी समझाएं कि वे ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया या किसी वेबसाइट पर माता पिता की अनुमति के बिना बैंकिंग या भुगतान संबंधी जानकारी न ले। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कॉल आए और ये सारी चीजें हो जाए तो घबरा कर बैठना नहीं है और देर नहीं करनी है। भारत में वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की शिकायत के लिए 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर हमें तुरंत संपर्क करने की जरूरत है।
0: जी जी।
1: शिकायत दर्ज करवा कर हम बेहतर तरीके से अपने जीवन को सही कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, जितनी जल्दी हो आप शिकायत करें उतना बेहतर होगा। आपके बैंक या संबंधित वित्तीय सेवा प्रदाता को भी तुरंत सूचित करें और खाते, कार्ड, UPI की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। ठगी के सबूत सुरक्षित रखें। ठगी करने वाले का मोबाइल नंबर, संदेश और चैट, स्क्रीनशॉट, लेन देन की जानकारी, UPI ट्रांजेक्शन ID, बैंक से प्राप्त SMS, संबंधित लिंक या ईमेल, इन चीजों को डिलीट ना करें। श्रोता साथियों, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहेंगे कि एक गांव में कमला जी के मोबाइल पर फोन आया कि मैडम, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आपका KYC अपडेट नहीं है, आज ही अपडेट नहीं किया तो आपका खाता बंद हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: कमला जी घबरा गई, लेकिन उनके मन में एक सवाल आया कि मैंने तो KYC करवाई थी। फिर उसने कहा कि वो तो पुरानी हो गई है, अभी आपको एक OTP आएगा, वह बता दीजिए। कमला जी OTP बताने ही वाली थी कि उनके बेटी ने फोन सुन लिया, माँ OTP किसी को नहीं बताना है, पहले बैंक की आधिकारिक हेल्पलाइन पर हम बात करेंगे। उन्होंने फोन काट दिया और बैंक के आधिकारिक नंबर से जानकारी ली। पता चला कि बैंक की तरफ से कोई फोन नहीं किया गया था। कमला जी ने कहा, अगर बेटी ने समय पर रोका नहीं होता तो शायद मेरा पैसा चला जाता। श्रोता साथियों, इस घटना से हमें सीख मिलती है कि एक मिनट रुक कर जांच करना जीवन भर की बचत बचा सकता है। साथियों, आज की बातचीत की कुछ जरूरी बातें हमें याद रखने की जरूरत है। पहली यह है कि OTP और पैन कार्ड और पासवर्ड हमें किसी को नहीं देना है।
0: जी हाँ।
1: दूसरी यह है कि अनजाने लिंक पर हमें क्लिक नहीं करना है। तीसरी यह कि हमें QR कोड स्कैन करने से पहले उद्देश्य समझना है।
0: बिल्कुल।
1: UPI पिन डालने से पहले नाम और रकम जांचनी है। पांचवी है, नौकरी और इनाम और योजना के नाम पर अचानक पैसे मांगने वालों से हमें सावधान रहना है।
0: जी हाँ।
1: छठा है कि बैंक अधिकारी बनकर फोन करने वाले व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें। सातवीं, रिश्तेदार के नाम से पैसे मांगने पर फोन करके पुष्टि करें। आठवीं, सोशल मीडिया पर निजी जानकारी सीमित रखें। नवी सुविधा है हमारे लिए कि हमें मोबाइल और ऐप को अपडेट रखना है और मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना है।
0: बिल्कुल।
1: दसवीं सावधानी है कि ठगी होने पर देर न करें, 1930 पर शिकायत करें और आधिकारिक साइबर क्राइम पेट्रोल पर, साइबर क्राइम जो पोर्टल होता है, उसका हमें उपयोग करना है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। तो श्रोता साथियों, इस तरीके से हम समझ पाए हैं कि अगर कभी अनजाने में हमारे साथ अगर ऐसी चोट हो जाती है या हम ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि सार्वजनिक वाईफाई पर बैंकिंग से आपको बचना है। जैसे कि अंजलि जी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार या अन्य सार्वजनिक स्थानों के खुले वाईफाई से बैंक खाते या डिजिटल भुगतान का उपयोग करना जोखिमपूर्ण हमारे श्रोता साथियों के लिए हो सकता है।
1: जी जी।
0: साथ ही अगर मोबाइल खो जाए साथियों, तो केवल फोन की चिंता आपको नहीं करनी है, बल्कि उसमें चल रहे बैंकिंग भुगतान एप्स की शुरुआत सुरक्षा की भी आपको सुरक्षा सुनिश्चित करनी है।
1: जी जी।
0: अनावश्यक होने पर बैंक और मोबाइल सेवा प्रदाता से संपर्क में रहें आप। यदि अचानक मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाए और आपको इसकी कोई स्पष्ट वजह न पता हो, तो मोबाइल सेवा प्रदाता से संपर्क करके जानकारी आप लें।
1: बिल्कुल।
0: किसी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक खाता, UPI पिन पैसे के बदले इस्तेमाल करने देना गंभीर या परेशानी पैदा कर सकता है। कोई व्यक्ति यदि कहे कि मेरे पैसे तुम्हारे खाते में आएंगे फिर मुझे वापस भेज देना, तो भी बिना पूरी जानकारी के ऐसा आपको नहीं करना है श्रोता साथियों।
1: जी जी, बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी जानकारी से श्रोता साथियों को अवगत करवा रहे हैं। कुछ छोटी मोटी बातें हैं वो आगे अवश्य रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी।

0: जरा उनसे।
1: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही आपको कहना चाहेंगे कि डिजिटल दुनिया हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मोबाइल और इंटरनेट ने बैंकिंग, शिक्षा, खरीदी, सरकारी सेवाओं और आपसे संपर्क को आसान बना दिया है।
2: जी हाँ।
1: लेकिन कशिश, सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। ऑनलाइन ठगी से बचने का सबसे मजबूत तरीका कोई महंगा उपकरण नहीं, बल्कि जागरूकता, सावधानी और सही समय पर सही कदम है। हमारा गाँव हो या शहर, किसान हो या मजदूर, महिला हो या युवा, बुजुर्ग हो या बच्चा, आज हर व्यक्ति को डिजिटल सुरक्षा की जानकारी होनी चाहिए। आज से एक नियम अपने जीवन में शामिल करें, रुकिए, सोचिए, जांचिए और फिर क्लिक कीजिए। किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर पैसा न भेजें, किसी को ओटीपी पेन न दें और अगर धोखाधड़ी हो जाए तो शर्म या डर के कारण चुप न रहें। ठगी आपकी गलती नहीं, लेकिन ठगी के बाद चुप रहना नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे खुद भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार, पड़ोसी और गाँव के लोगों को भी डिजिटल ठगी के प्रति जागरूक करें। मोबाइल चलाइए समझदारी से, पैसे रखिए जिम्मेदारी से, ओटीपी पिन किसी को न बताएं, साइबर ठगी से खुद को बचाएं।
2: बिल्कुल अंजलि जी, इसलिए श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, सावधानी भी रखनी होती है, धैर्य भी रखना होता है और जानकारी की पुष्टि के साथ साथ सही समय पर सहायता लेना भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल
2: अंजलि जी, हमें ऐसा डिजिटल गाँव बनाना चाहिए जहाँ लोग मोबाइल और इंटरनेट से डरे नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी, जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ इस्तेमाल करें।
1: जी हाँ।
2: क्योंकि साथियों, डिजिटल विकास की सच्ची सफलता तभी होगी जब गांव का किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिला, व्यापारी और बुजुर्ग, हर व्यक्ति डिजिटल सुविधा का लाभ सुरक्षित रूप से उठा सकेगा।
1: जी हाँ कशिश, आज के समय में डिजिटल तकनीक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने हमारे लिए कई काम आसान कर दिए हैं। घर बैठे पैसे भेजना, बिल जमा करना, टिकट बुक कराना, सरकारी सेवाओं की जानकारी लेना, पढ़ाई करना और दूर बैठे लोगों से संपर्क करना बहुत आसान हो गया है। लेकिन श्रोता साथियों, जिस तेजी से डिजिटल सुविधाएं हमारे जीवन में बढ़ रही हैं, उसी तेजी से डिजिटल अपराधों के तरीके भी बदल रहे हैं।
2: जी जी।
1: इसलिए केवल मोबाइल चलाना आसान आना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मोबाइल और इंटरनेट का सुरक्षित इस्तेमाल करना सीखना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग अक्सर किसी तकनीकी कमजोरी से ज्यादा हमारी लापरवाही, जल्दबाजी, डर, लालच और भरोसे का फायदा उठाते हैं। कभी कोई व्यक्ति अधिकारी बनकर बात करता है और जैसा कि हमने बताया कि किस तरीके से ठगी करने वाला व्यक्ति अलग अलग तरीके से फोन करता है।
2: जी हाँ।
1: इसलिए दोस्तों, अंत में यही कहना चाहेंगे कि आज हम स्वयं सावधान बने, कल अपने परिवार को सावधान करें और आगे अपने पूरे गाँव को जागरूक करें।
2: बिल्कुल,
1: डिजिटल सुविधा अपनाना ही हमारी सबसे बड़ी सुविधा होगी।
2: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में बातें हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
2: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को हमारे कार्यक्रम का पता हम बता दें।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
2: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
2: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं।

0: हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
2: नमस्कार
0: साथी दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलती हूँ एक और प्यारे से गीत के साथ में।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सअप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, आप भी आपके फरमाइश के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप भी आपकी फरमाइश को हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जमशेदपुर से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करता है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, रंजन शाह, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इस गीत के अनुरोध करता है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अपर्णव जी नामदेव। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मराठवाड़ा से समयद मशरूम, साइना हसन, आगजा नाजिया, आफिया और इब्राहिम जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है साई की सीढ़ी से। फिल्म का नाम है धनवान, गीत के बोल हैं ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल गए। इस गीत की फरमाइश करता है सुरेश मालोदी, वर्षा मालोदी, श्रद्धा मालोदी, मानसी जी मालोदी और भी श्रद्धा साथी जुड़ना चाह रही है। छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। इस गीत के अनुरोध करता है गंजरुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी।

जौनपुर से जुड़ रहे इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवदीश नाथ, अजरा तबू समझी। बनारस से जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरिन अंसारी, आफिया परवीन जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है यूपी से। फिल्म का नाम है खुदा गवाह, गीत के बोल ही रब को याद करूं। इस गीत की फरमाइश करता है आसिफ अली खान, मुमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन टिकिस्टो, रोजे टिकिस्टो, पल टिकिस्टो, विलिसी टिकिस्टो। इस गीत के अनुरोध करता है मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अपनव जी नामदेव। दिल्ली से जुड़ रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष आजा, चेतनी मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना, रिधानजी खुराना। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं रब को याद करूं। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है नेवासा महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है मोहब्बत, गीत के बोल हैं आईना बता दे कैसे उसका दिल चुराऊं। इस गीत की फरमाइश करता है अमल लोखंडे, शारदा लोखंडे, आरती लोखंडे और प्रसाद जी लोखंडे। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से, शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, शिवप्रसाद जयसवाल, अपनव जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जयसवाल और तृप्ति जी जयसवाल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य जी कसाना। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आपसे भी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और सभीठ कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना दाई गुड़ाने, प्रणी प्रसिद्धि, हीरामन शेंडी, प्रतिभाजी गुड़ाने, महेश राम टेकी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे भागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन जी। इस गीत की फरमाइश करता है दुर्गा कॉलोनी हांसे से राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं बलाई छत्तीसगढ़ से दीपक खटक, प्रमिला खटक। चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं सुरेश डोमिन, शालिनी जी रोमिन। लाहौरा से जुड़ रहे हैं डोली और प्रभा जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। तो आइए साथियों, श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को सुनते ही आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जलालाबाद वेस्ट से। फिल्म का नाम है सर, गीत के बोल हैं सुन सुन बरसात की धुन। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है सुरेश मालोदी, सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। इसी बीच जुना जा रहे धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नुसार सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। वासिम महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायराजी सुरेशी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानू, एलिसा नायाब जी। बक्सर शहर से जुड़ना चाह रहे फातिमा राज, बीबी अंसारी, डब्ल्यू जी अंसारी। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं रुपेश संगे, महेश संगे, ब्रजेश संगे, प्रतीजी संगे और संगे परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है बिहार से दीपक उमा, उमा कमल, रमेश उमा, अरविंद उमा, कमल उमा जी। खड़वा से जुड़ रही दुर्गा कुमारी, सपना राकेश ताई जी। ढुमराव से और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, स्टार मोहम्मद समी जी। चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी जी यादव और नरेंद्र जी यादव। अम्बाला हरियाणा से जुड़ रहे हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश रावल, प्रियंका, नमन, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल, विजेंद्र जी जान जी। डुमराव से जुड़ना चाह रहे वल्लूला अंसारी, असमानाज अंसारी, शबनम बानो जी। बक्सर से जुड़ रहे हैं राज एडी अंसारी, फातिमा नाज। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं सतीश अनिजा और बिमला जी अनिजा। दिल्ली से जुड़ रहे हैं राज खोरवाल, रानी खोरवाल, प्रकाश जी खोरवाल और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। संगमुंगी से बाबा साहेब कणक्कर, साखरबाई कणक्कर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणी ईश्वरी और कणक्कर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। भद्रावती से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल लोहेवाला, शाहिदा शेख, शाहिल शेख, अब्दुल्ला जी शेख। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, आनंद राठौड़, श्रीमती गिरिजा जी राठौड़, लोकेश जोशी, श्रीमती बेबी वेदई जोशी, कुमारी अंकिता जोशी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं श्रीमती जयवंती जी केवट और बस्तर से जुड़ रही हैं पूनम जी नायडू। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं मराठवाड़ा से समीद मशरूम, शाइना हसन, अक्सानाजिया, आफिया इब्राहिम और सदाम जी। सलार पिलगाम कश्मीर से जुड़ रहे हैं पीरजादा, मिराजुद्दीन, नसनुद्दीन, केसरुद्दीन जी। साथ ही जुड़ना चाह रहे हैं सनावत से मोहम्मद सूफियान, मोहम्मद हासिब, मोहम्मद इशाक और बब्बू डब्बू जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भेड़शोर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा।

0: सुर में गाना सीखिए।
1: हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट कशिश पारशर। स्वागत है साथियों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम आपकी फरमाइश कार्यक्रम को लेकर हाजिर हो जाते हैं और आपसे बातचीत करते हैं साथियों। फरमाइश गीतों के साथ में लेकर हमारा मनोरंजन आपके साथ बना रहता है। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से, जैसा कि ये सिलसिला सुबह 11 बजे से बना हुआ था, जिसे आप सभी सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और अब आप इसे आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ ही, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में। तो दोस्तों बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। साथियों अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी, कश्मीर से। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया, गीत के बोल हैं मेरे रंग में रंगने वाली। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं कश्मीर से, हैं फैजरा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन और भी दोस्त इस गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं मराठवाड़ा से। सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निज़ामुद्दीन, रामभाव तांदले जी। मड़ियाव जौनपुर से इरशाद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमा इरशाद, अजरा तबस्सुम जी। बनारस से हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, मोहम्मद आफिया, परवीन अंसारी जी, कैफ अंसारी जी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं मेरे रंग में रंगने वाली। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपके फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था मैंने भी प्यार किया फिल्म का, मेरे रंग में रंगने वाली। इसी गीत के बाद साथियों फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है पाड़ी कला से। साथियों फिल्म का नाम है, मैं आपको बताना चाहूंगी। गीत के बोल हैं, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। फिल्म का नाम है वारिस। फरमाइश करते हैं इस गीत के साथ पाड़ी कला से जुड़ रहे हैं हेमंत टेलर, जलत जोशी जी, व्यासा सोनी जी, छाया सोनी जी, कमलेश बुनकर, चंद्रपाल कुशवाहा, सोहननाथ जी, शालिनी जैन, हर्षाज राठौर, पिंकेश जी, निवेदिता सिंह जी और माजिद खान जी, रोहित सुमेधा, धनराज जी। इसी बीच हमारे श्रोता साथी घाटोल से जुड़ रहे हैं गंगाराम जी, अभिषेक जी, शिशुपाल, सिद्धार्थ पंड्या, मानसिंह निनामा जी, महेश चंद्र शर्मा, शिवदयाल समुदयाल, राकेश शर्मा, राजेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं। नरेश चौहान, हेमंत टेलर, अजय कुमार, दीपक घाटोल से हैं, इसी बीच तलवाड़ा से हैं, अजित कुमार जी, दलपत्य जी, कला सिंह जी, कल्याण सिंह, भूपत कुमार, हृदयश्याम, सीताराम, घनलाल दास जी, घनश्याम जी, लक्ष्मण जी, प्रवीण कुमार और हरिशंकर प्रजापति जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी, पटापरा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरबिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नाईक, अंकिता जोशी, वेदही जोशी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, गंजडू द्वारा उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों जीत। गीत के बोल हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नादिर शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नाम देव जी और भी साथी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। आपको नाम बताना चाहूंगी साथियों, जुड़ रहे हैं जौनपुर से इरशाद, अमन अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, अजहर तबस्सुम, नवेद इरशाद, बनारस से अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। तो आइए साथियों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है श्रुता साथियों संगीत, गीत के बोल हैं और अब्बा कोई तो बताए। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, हवि देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, मानू शानू, बब्बन मुनहू, कान्हा, हरिप्रिया ठाकुर जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अर्पणा नामदेव जी। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, अभिषेक, अर्पणा नामदेव। मस्तानपुरना जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। इसी बीच हमारे और भी साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं। आकोट महाराष्ट्र से नितिन पाटिल, नलिनी पाटिल जी और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। नाम बताना चाहूंगी, अमरावती महाराष्ट्र से हैं श्याम कीटे, वंदना कीटे, कार्तिक कीटे, बाविका कीटे, समस्त कीटे परिवार सदस्यगण। जुड़ना चाह रहे हैं नेहरू चौक पैठन से सुरेश यादव, अनिता जादव, आरती पूजा, प्रसाद यादव, सोनल यादव, बीबी सिया यादव। जालाना शहर से सोमनाथ यादव, गीता यादव और ओम यादव, सुभाष यादव, चंदन, एकनाथ यादव, संगीता यादव। इसी बीच हमारे श्रोता साथी रोहिदास चौक पंडापुर शहर से भी जुड़ रहे हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशाज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़की जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं और अब्बा कोई तो बताए। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी, लोहड़ेरा जिला बागपत से। साथियों, फिल्म का नाम है हीरो, गीत के बोल हैं तू मेरा जानू है, तू ही मेरा दिलबर है। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी जी, अर्जुन बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुजन रतन शिषपाल, अकेला जी, तेजपाल प्रजापति जी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं दीपक खट्टक, सुनीला खट्टक, प्रमिला खट्टक। चंद्रशहर से हैं सुरेंद्र डोमेंद्र, सोनाली डोमेंद्र। लोहारा से जुड़ रहा डोली मिन्हास, प्रभा मिन्हास। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। तो आइए साथियों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं तू मेरा जानू है, तू ही मेरा दिलबर है। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, तू मेरा जानू है तू मेरा दिल पर है, इसी गीत के बाद श्रोता साथियों फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है साथियों मोहरा, गीत के बोल है ना गजरे की धार ना मोतियों के हार। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में धनोरी तेलीवाला से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयन बाबू जी, वसीम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, परिधि सुरोशी, मायरा सुरोशी जी इसी बीच हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं, और भी जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूँगी जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाद, नाजी शेख, दानी शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव जी, और भी साथी जुड़ रहे हैं बनारस से हैं अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन जी, कोरबा से हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मालाश ठाकुर, मानु शानू, बब्बन मनु काना, हरिप्रिया जी, उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अर्पणा नामदेव जी, मस्तानपुरना जंक्शन से अनंता भगत, अनुरा चेतन, सुलोचना भगत, बागपत उत्तर प्रदेश से हैं आसिफ अली खान, मोमिन अनास, मुस्कान, सारिक अली खान, सारिक अली खान, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो जी के डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो जी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं ना कचरे की धार ना मोतियों के हार। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत आया है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है भाग मिल्का भाग, गीत के बोल हैं मेरा यार। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अर्पणा नामदेव जी, बिहार कॉलोनी दिल्ली से हैं। तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन चंडीगढ़ से, राहुल रचिता केशोरी धान खुराना जी। अमरावती महाराष्ट्र से जुड़ रहे सिद्धार्थ गुणा ने, अर्चना इताई गुणा ने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे, प्रतिभा गुणा जी गुणा ने और मोहेश रमटेगी जी। कोरबा से जुड़ना चाह रहे जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि नितिन जगमोहन जी। और भी साथी जुड़ रहे हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से दीपक खट्टक, प्रमिला खट्टक, सुरेंद्र रोमेंद्र, सोलानी डोमेंद्र, डोली मिन्हास, प्रभा मिन्हास। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी, निमित आहूजा जी। धनौरी तेलीवाला से निशाद सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू जी। वसीम महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं मास्टर विठल, सुरेश शर्मा, सुरदेव परदेश से मायरा शुरुसे जी। बक्सर साहब से फातिमा राज, बेबी अंसारी, डब्ल्यू अंसारी जी। जुड़ना चाह रहे हैं राहुल नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोलवार, मेघा रानी जी और अविका जीविका खोरवाल, प्रकाश जी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया दीक्षित, निमित आहूजा जी। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। मैं आपको नाम बताना चाहूँगी।

नहीं, अंकिता जोशी, वेदही जोशी, आनंद राठौर, गिरजा राठौर जी, गफार डावर जी, और मध्य प्रदेश से हैं जयवंती केवट, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू जी, भद्रावती से अब्दुल लोहेवाला, साजिदा शेख, राहिल शेख, अब्दुल्ला शेख, जौनपुर से इरशाद अवध अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, अजरा तबस्सुम जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से श्रोता साथी जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, नंदकिशोर गटे, संगीता गटे, साक्षी गटे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टहुल, बीपी कुलते, बिरजू परदेसी जी, बिरशहर से जयश्री मेहतरे, कविता टहुल, पुष्पा अग्रवाल, कमल कुलथे जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त, गुलजन सनावत से मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद आसिम, मोहम्मद इसाक, बब्बू टप्पू जी, कश्मीर से है फेरजरा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन, मराठवाड़ा से सैयद नू, सैयद नुमान, तस्वीन मसद, सैयद निजामुद्दीन, रामभाव तांदले जी, यूपी से हैं बाबा साहेब कगणक्कर, सागरबाई कगणक्कर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणी, ईश्वरी कगणक्कर, परिवार के सभी सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं और भी साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। रायगढ़ से हैं उमरा, दीपक उमा, उमेश उमा, रमेश उमा, अरविंद उमा और कमल उमा जी, खंडवा से दुर्गा कुमारी, सपना राकेश ताई जी, डुमराव से लालू व दिव्याना, दिव्या भारती, जुड़ना चाह रहे चंद्रशहर से है महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव, नरेंद्र यादव। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन कर लेते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं मेरा यार है सौरवर का, तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और आपको बताना चाहूँगी साथियों कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में नए नए फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए साथियों आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

प्रिय श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों अब वक्त है शाम के खास कार्यक्रमों का जो आपके हर पल को बनाएगा खास, तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज के शाम के कार्यक्रम की रूपरेखा। साथियों शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति शांति और सुकून से भरे सुरों के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कहने का समय। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर युवाओं की आवाज, जहां सपने बोलते हैं, विचार उड़ान भरते हैं और युवा अपनी बात खुलकर रखते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं और कशिश पाराशर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है श्रोता साथियों शाम 6 बजे कार्यक्रम सच्चा बचपन। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे बच्चों की मासूमियत, मुस्कान और बचपन की यादों से भरा प्यारा सा सफर। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है खेतीबाड़ी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। ये कार्यक्रम किसानों के काम की बात, जमीन से जुड़ी सच्ची जानकारी और अनुभव है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। श्रोता साथियों जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा चल रही है तो हम अगला कार्यक्रम आपको बताते हैं। अगला कार्यक्रम शुरू होगा 7 बजे और इस कार्यक्रम का नाम है सच्चा स्वराज। साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे समाज, सोच और सच्चाई से जुड़ी आवाज जो हमें जागरूक बनाती है। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम होगा हमारा स्वास्थ्य, जो कि सेहत और सम्मान की बातों के साथ होगा। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसे लेकर आएंगी आरजे कशिश पाराशर और हमारे रेडियो साथी मनीषा पटेल। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है सपनों की उड़ान, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। तो श्रोताओं जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा मैं आपको बता रही हूं, तो अंत में आप सुनेंगे रात 9 बजे शामी कसले। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनेंगे अल्फाज जो छू जाए, एहसास जो ठहर जाए, सुकून भरी रात की शुरुआत। तो श्रोताओं शाम की घड़ियां यूं ही नहीं गुजरती, ये वो पल है जहां भक्ति भी है, युवा सोच भी है, बचपन की हंसी भी है, किसान की मेहनत भी है, सच की आवाज भी है, सेहत और सम्मान की बात भी है, संगीत का जादू भी है और गजलों का सुकून भी है। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है, ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव-गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथ ही जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बात रहने वाली है। विषय है हमारा कि हमें अपना मन बदलकर जो स्थिति होती है हम उसे बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि हालात हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन उन हालात को देखने का हमारा नजरिया हमारे हाथ में जरूर होता है।
0: जी हाँ,
1: आज के इस विषय के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि हम अक्सर कहते हैं कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरे पास अवसर नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। लेकिन श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि परिस्थिति को बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि हमारे मन और सोच से ही हो सकती है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हम इसी विषय को लेकर बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से जब हमारा मन बदल जाता है तो परिस्थितियाँ भी बदल जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, कार्यक्रम के माध्यम से आज का हमारा विषय जुड़ चुका है, हम बात कर रहे हैं कि अपना मन बदलकर हम स्थिति किस प्रकार से बदल सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले बताया था कि हमने अक्सर लोगों को एक कहते हुए सुना है कि मेरी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, मेरे पास अवसर नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता या वैसा नहीं कर सकता, या फिर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, यहाँ पर हम आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन में हर किसी के सामने चुनौतियाँ आती ही रहती हैं। किसी के सामने पढ़ाई की चुनौती होती है जागृति जी, तो किसी के सामने करियर की है।
1: जी हाँ।
0: किसी के सामने आर्थिक समस्या है, तो कोई अपने आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा होता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनसे निपटने का पहला कदम एक ही है और वो है हमारी सोच में बदलाव।
1: बिल्कुल कशिश, जब कोई कठिन परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हमारा मन तुरंत नकारात्मक विचारों से भर जाता है। हमें लग सकता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन श्रोता साथियों, एक ही परिस्थिति को दो लोग बिल्कुल अलग तरीके से देख सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: एक व्यक्ति कह सकता है कशिश की समस्या मेरे लिए बहुत बड़ी है, वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है कि मुश्किल है लेकिन मैं इसे धीरे धीरे हल करने की कोशिश करूंगा।
0: जी जी,
1: परिस्थिति वही है श्रोताओं, लेकिन सोच अलग है और यही सोच आगे चलकर दोनों के परिणामों को अलग कर सकती है।
0: जी हाँ।
1: इसीलिए युवाओं के लिए जरूरी है कि वे हर समस्या को केवल परेशानी के रूप में न देखें, बल्कि ये भी सोचें कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकती हूँ या क्या सीख सकता हूँ।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ साथियों, कई बार समस्याएं जितनी बड़ी नहीं होती, हमारा डर उससे भी ज्यादा बड़ा बना देता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए, अब दो रास्ते हैं हमारे सामने। एक तरफ बैठकर ये सोचना कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, और दूसरी तरफ ये समझना श्रोता साथियों कि मेरी तैयारी में कहाँ कमी रह गई है।
1: बिल्कुल।
0: और अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। जागृति जी, पहली सोच हमें रोक देती है, जबकि दूसरी सोच जो है वो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। कहना चाहेंगे हमारे युवा साथियों से कि इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हर समय सकारात्मक रहने का दिखावा किया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि समस्या को स्वीकार करते हुए समाधान की दिशा में कुछ नया सोचा जाए।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि अपना मन बदलो, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी भावनाओं को दबा दो या अपनी परेशानियों को नजरअंदाज कर दो। मन बदलने का अर्थ है श्रोताओं कि अपनी सोच को एक नए दृष्टिकोण से देखना।
0: बिल्कुल।
1: अगर सफलता मिली है तो उसे अपनी पहचान न बनाए, अगर किसी ने आपकी आलोचना की है तो उसे अपनी क्षमता का अंतिम फैसला न माने, अगर कोई अवसर छूट गया है तो ये न सोचे कि जिंदगी में अब कोई अवसर ही नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: अपने आप से कहे कि जो हुआ वो मेरे जीवन का एक हिस्सा है और पूरी कहानी नहीं है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि युवावस्था जो है वो सपनों को आकार देने की अवस्था होती है। इस उम्र में दोस्तों व्यक्ति के पास ऊर्जा भी होती है, सीखने की क्षमता भी होती है और नई शुरुआत करने का अवसर होता है। लेकिन कई बार जागृति जी, तुलना और असफलता आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है।
1: बिल्कुल।
0: हम कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर किसी दूसरे की सफलता देखकर हमें लगता है युवा साथियों कि बाकी सभी हमसे आगे निकल गए हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग अलग होती है।
1: जी हाँ।
0: किसी और की गति देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझिए, अपने मन में ये विश्वास पैदा कीजिए कि मैं जहाँ हूँ वहीं से मैं अपनी शुरुआत कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल। और हम कह सकते हैं कशिश कि छोटी सोच से बड़ी परिस्थिति नहीं बदली जा सकती है। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर ही रहे हैं आज के इस विषय को लेकर कि हमारा मन बदलकर हम अपनी स्थिति को भी बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और बात कर रहे थे हम कि हम अपना मन बदलकर हमारी स्थिति को भी बदल सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: गीत से पहले हमने परिस्थिति से पहले अपनी सोच को बदलना क्यों जरूरी है इसको लेकर बात की थी। साथ ही हमने जाना था नकारात्मक सोच समस्या को और बड़ा बना देती है। मन बदलने का मतलब खुद को बदलना नहीं, खुद को बेहतर बनाना भी है। साथ ही युवाओं के लिए आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल,
0: ये बातें करी थी, यही जानते हैं कि छोटी सोच से बड़ी परिस्थिति नहीं बदली जा सकती।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, अगर हम हर काम शुरू करने से पहले ही सोच ले कि मुझसे नहीं होगा तो हम कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम कहें मैं कोशिश करूंगी या सीखूंगी और जरूरत पड़ी तो दोबारा प्रयास भी करूंगी तो हमारे सामने संभावनाएं खुलने लगती हैं।
1: जी हाँ,
0: बड़ा बदलाव हमेशा बड़े कदम से नहीं आता श्रोताओं, कई बार छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा परिवर्तन लाती है। जैसे कि कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि हमें समय पर उठना चाहिए, रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए, नई नई स्किल्स को सीखना होगा, अपने काम की योजनाओं को बनाना होगा, गलतियों से सीखना होगा, साथ ही अपने लक्ष्य पर लगातार काम करते रहना होगा।
1: जी जी,
0: ये जो छोटे छोटे कदम है वो धीरे धीरे बड़ी स्थिति पैदा करते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही हमारे युवा साथियों को असफलता को देखने का नजरिया भी बदलना चाहिए, क्योंकि युवाओं के जीवन में असफलता का आना स्वाभाविक है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, परीक्षा में कम अंक आ सकते हैं, नौकरी नहीं मिल सकती, किसी प्रतियोगिता में हार हो सकती है या कोई योजना सफल नहीं हो सकती, लेकिन असफलता का अर्थ ये नहीं है कि आप असफल व्यक्ति हैं। असफलता केवल ये बताती है कि आपकी वर्तमान कोशिशों को शायद किसी बदलाव की जरूरत है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में हमारे युवा साथी अपने आप से पूछ सकते हैं कि कहाँ कमी रह गई, आपको क्या सीखने की आवश्यकता है दोस्तों, और अगली बार में आप क्या अलग करने की कोशिश करेंगे।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, जब ये सवाल हमारे मन में आते हैं तो असफलता एक रुकावट के बजाय सीखने का अवसर बन जाती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें हम तुरंत बदल नहीं सकते, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी।
1: बिल्कुल,
0: उदाहरण के लिए अगर किसी युवा को किसी परीक्षा में मनचाहा परिणाम नहीं मिला तो लंबे समय तक शिकायत कर सकता है, लेकिन इसे परिणाम नहीं बदलेगा।
1: जी हाँ,
0: इसके बजाय वो अपनी तैयारी की रणनीति बदल सकता है। कशिश, किसी शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकता है और फिर से प्रयास भी कर सकता है।
1: जी हाँ,
0: और यही अंतर है, शिकायतें हमें वहीं रोकती है जबकि समाधान हमें आगे बढ़ाता है।
1: जी हाँ जागृति जी, साथी दोस्तों, हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनकी बातें और सोच हमारे मन पर प्रभाव डाल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: अगर हमारा वातावरण लगातार निराशा, मजाक, नकारात्मकता और हतोत्साह से भरा हुआ है तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है जागृति जी। इसलिए ऐसे लोगों के साथ हमारे युवा साथियों द्वारा समय बिताना अच्छा होता है जो हमें प्रेरित करे, हमारी गलतियों पर सही सलाह दे साथियों, और हमें बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: जी हाँ,
1: साथ ही श्रोता साथियों, हमें खुद भी दूसरों के लिए ऐसा ही सकारात्मक वातावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
0: बिल्कुल कशिश, जैसा कि आपने बताया कि हमें अपने आसपास का माहौल भी मन को प्रभावित करता हो ऐसा बनाना होगा। साथ ही हमें लक्ष्यों को स्पष्ट रखना होगा ताकि हमारा जो मन है वो भटके नहीं।
1: बिल्कुल,
0: कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां इसलिए भी कठिन लगती है श्रोताओं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है।
1: जी जी,
0: हमारे युवा साथियों को हम कहना चाहेंगे कि अपने छोटे और बड़े लक्ष्य लिखने होंगे आपको। उदाहरण के लिए, आज क्या करना है, इस सप्ताह क्या सीखना है और आने वाले महीने में किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। लक्ष्य स्पष्ट होने पर समस्या खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें संभालने का तरीका बेहतर हो जाता है।
1: जी जी,
0: इसलिए याद रखिए, दिशा स्पष्ट हो तो धीमी गति भी हमें आगे ले जाती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों हमें अक्सर लगता है कि बदलाव के लिए सही समय का इंतजार हमें करना चाहिए, लेकिन सही समय का इंतजार करते करते कई अवसर ऐसे निकल जाते हैं जागृति जी, जो हमें पता ही नहीं चलता।
0: बिल्कुल,
1: अगर आपको दोस्तों अपनी पढ़ाई में सुधार करना है तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो आज पहला कदम उठा लीजिए। अगर आत्मविश्वास बढ़ाना है तो छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेना शुरू कीजिए। अगर दोस्तों नकारात्मक सोच कम करनी है तो अपने विचारों को पहचानना शुरू कीजिए।
0: जी हाँ,
1: कहते हैं जागृति जी कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन लिया गया सही फैसला बदलाव की शुरुआत जरूर कर सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, इसीलिए हम कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि हम दूसरों से तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन खुद से बातचीत करना भूल जाते हैं।
1: जी,
0: कभी शांत होकर खुद से पूछिए श्रोताओं कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ, मुझे किन चीजों से डर लगता है, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है, मैं आज अपने लिए एक छोटा सा अच्छा कदम क्या उठा सकता हूँ।
1: जी
0: साथियों, जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं तो निर्णय लेना आसान होता है। जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता है कशिश, जैसे कि मौसम हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, दूसरों के फैसले हमारे नियंत्रण में नहीं होते, अचानक आने वाली समस्या हमें नहीं पता होती है, बीती हुई घटनाएं हमेशा नहीं बदल सकते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन हम ये तय कर सकते हैं दोस्तों कि अब आगे क्या करना है। यही सोच हमारे युवाओं को मजबूत बनाती है। अगर दरवाजा बंद हो गया है दोस्तों, तो कुछ समय रुक कर देखिए क्या कोई दूसरा रास्ता है। अगर रास्ता कठिन है तो क्या कदम छोटे किए जा सकते हैं। अगर कोई अवसर ही नहीं मिला तो क्या नई क्षमता विकसित की जा सकती है। हर परिस्थिति में कोई न कोई अगला कदम जरूर खोजा जा सकता है।
1: जी हाँ।
0: हमारे अंदर सोचने की क्षमता होनी चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो ऐसे में युवा साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों आपके जीवन में आने वाली हर परिस्थिति आपके खिलाफ नहीं होती।
0: बिल्कुल।
1: कुछ परिस्थितियाँ आपको मजबूत बनाने, कुछ सिखाने और कुछ आपको आपकी वास्तविक क्षमता पहचानने के लिए भी आती है। इसलिए जब अगली बार कोई मुश्किल आपके सामने आ जाए तो तुरंत ये मत कहिए कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है।
0: बिल्कुल।
1: एक बार रुक कर पूछिए साथियों कि इस स्थिति में आप कर क्या सकते हैं। हो सकता है कि आपका यही सवाल आपकी दिशा बदल दे। याद रखिए युवा साथियों की परिस्थिति बदलने से पहले दृष्टिकोण बदलता है। दृष्टिकोण बदलने से व्यवहार बदलता है और व्यवहार बदलने से परिणाम बदलते हैं। जागृति जी।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए अपने मन को निराशा से संभावना की ओर, डर से प्रयास की ओर, शिकायत से समाधान की ओर लेकर जाइए। क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती।
0: बिल्कुल।
1: बस अपने भीतर देखने का नजरिया बदलना होता है।
0: जी हाँ कशिश। तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हालात जैसे हैं उन्हें तुरंत बदल पाना हमेशा संभव नहीं है। लेकिन उन हालात में हम क्या सोचते हैं, क्या सीखते हैं और अगला कदम क्या उठाते हैं, ये हमारे हाथ में जरूर है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाइए, सोच को सकारात्मक दिशा दीजिए और छोटे छोटे कदमों से अपनी स्थिति को बेहतर बनाइए। क्योंकि
1: हाँ।
0: हमारी सोच हमारी दिशा है और हमारा प्रयास ही हमारी पहचान है। इसलिए मन बदलिए, नजरिया बदलिए और अपनी कहानी को एक नई दिशा जरूर दीजिए।
1: जी हाँ जागृति जी। तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम युवाओं की आवाज में हमारे युवा साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा हम जरूर लेंगे दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको सुनवाना चाहेंगे यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: साथ ही आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है बच्चों को असफलता से सीखना कैसे सिखाएं।
0: बिल्कुल
1: कशिश, श्रोता साथियों से पूछना चाहेंगे कि क्या आपके बच्चे ने कभी किसी परीक्षा में कम अंक आने पर खुद को कमजोर समझ लिया है? क्या खेल में हारने के बाद उसने दोबारा कोशिश करने से मना कर दिया? क्या छोटी सी असफलता के कारण वह निराश, उदास या आत्मविश्वासहीन हो जाता है? यदि हाँ तो यह केवल आपके बच्चे की नहीं बल्कि आज के समय में अनेक बच्चों की समस्या है।
0: बिल्कुल अंजलि जी,
1: क्योंकि कशिश हम अक्सर बच्चों को सफलता का महत्व तो बताते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं सिखा पाते कि असफलता का सामना कैसे किया जाए।
0: जी
1: जबकि
0: हाँ।
1: जीवन की सच्चाई यह है कि सफलता और असफलता दोनों जीवन का हिस्सा है, क्योंकि जो बच्चा असफलता से सीखना सीख जाता है वही आगे चलकर मजबूत, आत्मविश्वासी और सफल इंसान बनता है।
0: बिल्कुल,
1: आज का हमारा विषय है बच्चों को असफलता से सीखना कैसे सिखाएं।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें हम कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर श्रोता साथियों से ढेर सारी करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी जी,
0: तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों को असफलता से सीखना हम कैसे सिखा सकते हैं। तो अंजलि जी, सबसे पहले हमें अपने बच्चों को ये बताना होगा कि असफलता जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। साथियों, कोई भी व्यक्ति हमेशा सफल नहीं होता। हर सफल इंसान के पीछे कई असफलताएं छिपी हुई होती हैं। हमें बच्चों को ये समझाना होगा कि गलती करना गलत नहीं है, हारना अंत नहीं है। असफलता सीखने का अवसर है और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, जब ये बात बच्चे समझ लेते हैं कि असफलता सामान्य बात है, तो उनका डर कम होने लगता है।
1: बिल्कुल यही बात आती है श्रोता साथियों, बच्चों पर अत्यधिक दबाव न डालने की, क्योंकि कशिश हम देखते हैं कि कई बार माता पिता अनजाने में बच्चों पर बहुत अधिक अपेक्षाएं थोप देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमेशा प्रथम आने का दबाव, दूसरों से तुलना, छोटी गलती पर डांटना, हर समय बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। श्रोता साथियों, ऐसा माहौल बच्चों में असफलता का डर पैदा करता है। बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि उनका मूल्य केवल अंकों या उपलब्धियों में नहीं तय होता।
0: जी हाँ,
1: हर बच्चा अलग होता है। किसी की पढ़ाई में रुचि होती है, किसी की खेल में, तो किसी की कला में। यदि हम बच्चों की तुलना दूसरों से करेंगे तो वे निराश हो सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसके बजाय उनकी मेहनत और प्रयास की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि कशिश जब बच्चों को अपने प्रयासों की प्रशंसा मिलती है तो वह असफलता होने पर भी दोबारा प्रयास करने का साहस जुटा पाते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो असफलता के कारणों को समझना भी जरूरी है, क्योंकि साथियों जब बच्चा किसी कार्य में सफल नहीं होता तो उसे दोष देने के बजाय उसके साथ बैठकर कारणों पर हम चर्चा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि तैयारी में कमी कहाँ रह गई है, कौन सी बात बेहतर की जा सकती थी, अगली बार क्या बदलाव जरूरी है। इससे अंजलि जी बच्चा समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर ध्यान देना सीखता है।
1: जी हाँ,
0: कई बार हम देखते हैं अंजलि जी के जो बड़े लोग होते हैं वो बच्चे की हर समस्या खुद हल कर लेते हैं। इससे बच्चा संघर्ष करना नहीं सीख पाता साथियों, उसे अपने निर्णय लेने आप दें, छोटी जिम्मेदारियां दें, समस्याओं का हल खोजने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जब बच्चा छोटे संघर्षों का सामना करता है तो वह बड़े संघर्षों के लिए भी तैयार हो पाता है।
1: बिल्कुल यही श्रोता साथियों बात आती है, बच्चों को उन लोगों की कहानियां सुनाएं जिन्होंने कई बार असफल होने के बाद सफलता प्राप्त की। ऐसी कहानियां बच्चों को सिखाती है कि असफलता स्थायी नहीं होती, धैर्य और मेहनत जरूरी है और सफलता एक लंबी यात्रा है। कहानियां बच्चों पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं और उन्हें प्रेरित करती हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कशिश कि असफलता के बाद बच्चों के मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं दूसरों से कम हूँ, मैं हमेशा हार जाता हूँ। ऐसे समय में उन्हें सकारात्मक सोच सिखानी चाहिए। उन्हें हमें बताना होगा कि तुम कोशिश कर रहे हो, यह सबसे महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ,
1: गलतियाँ सीखने का हिस्सा है, अगली बार तुम और बेहतर करोगे। यही सारी जो चीजें होती हैं कशिश, वो बच्चों को उनके जीवन में असफल होने से रोक पाती है।
0: बिल्कुल,
1: और अगर बच्चे इन सारी चीजों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो कई ऐसे समस्याएं हैं जिनका समाधान अपने आप खोज पाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है कि हम अपने बच्चों को असफलता से सीखना कैसे सिखा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले कशिश हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे थे कि किस तरीके से हमें बच्चों को असफलता से सीखना सिखाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, इसके लिए हमें भावनाओं को व्यक्त करने का बच्चों को अवसर देना है। जब बच्चा कशिश असफल होता है तो वह दुखी और निराशा महसूस करता है। उसे अपनी भावना व्यक्त करने हमें देना है, उसकी बात को ध्यान से सुनना है, उसकी भावनाओं को समझना है, उसे ये महसूस कराना है कि परिवार उसके साथ है, क्योंकि भावनात्मक सहयोग बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।
1: जी हाँ,
0: आज के समय में बच्चे तुरंत परिणाम चाहते हैं श्रोता साथियों, लेकिन जीवन में बड़ी उपलब्धियां समय और मेहनत मांगती है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को समझाएं कि सफलता एक प्रक्रिया है, लगातार प्रयास जरूरी है, हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है। जो बच्चा धीरे रखना सीख जाता है वह जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनका बेहतर सामना कर सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथियों, अगर बात करें स्कूल परिवार की संयुक्त भूमिका की, तो बच्चों में लचीलापन और आत्मविश्वास विकसित करने में स्कूल और परिवार दोनों का योगदान जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, शिक्षकों को बच्चों की गलतियों को सीखने का अवसर बनाना चाहिए। माता पिता को बच्चों का भावनात्मक सहारा बनना चाहिए।
0: जी जी,
1: साथ ही बच्चों को प्रतियोगिता से अधिक सीखने पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अंजलि जी, हम देखेंगे साथियों कि जब घर और विद्यालय दोनों सहयोग करते हैं तो बच्चा मानसिक रूप से मजबूत बनता है।
0: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों बात आती है, गांव और समुदाय में भी बच्चों को ये संदेश देना जरूरी है कि हार जीवन का अंत नहीं है।
1: जी,
0: खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी बढ़ाएं, बच्चों को मंच पर बोलने के अवसर दें, प्रयास करने वालों का सम्मान करें और केवल विजेताओं की ही नहीं मेहनत करने वालों की भी सराहना करें।
1: जी,
0: इससे बच्चों में आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। श्रोता साथियों, बच्चों को हर बार जितना सिखाने से अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें हर परिस्थिति में संभालना हम सिखाएं।
1: बिल्कुल,
0: जीवन में ऐसे अनेक अवसर आएंगे जब उन्हें निराशा, कठिनाई और असफलता का सामना करना पड़ेगा। यदि बचपन में ही वे गिरकर उठना, हार कर सीखना और रुकने के बजाय आगे बढ़ना सीख जाते हैं तो कोई भी चुनौती उन्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती।
1: जी हाँ,
0: हम बच्चों के लिए ऐसा वातावरण बनाएं जहाँ गलती करने पर डर नहीं बल्कि सीखने का अवसर मिले, जहाँ हार का मजाक न उड़ाया जाए बल्कि प्रयास की सहारा न की जाए, जहाँ सफलता का अर्थ केवल जीतना नहीं बल्कि निरंतर सीखते रहना माना जाए।
1: बिल्कुल,
0: जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है कशिश, जिन्होंने असफलता को अपनी मंजिल का रास्ता बना लिया था। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बचपन केवल उपलब्धियां हासिल करने का समय नहीं है बल्कि जीवन को समझने, अनुभवों से स्वयं को गढ़ने का समय होता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि कशिश बच्चे जब किसी काम में असफल होते हैं तो वे उस क्षण उन्हें सबसे ज्यादा जरूरी किसी फैसले की नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो उनके साथ खड़ा होकर कहे, कोशिश करना बंद मत करो, हम मिलकर समझेंगे कि आगे क्या करना है। यही जो भरोसा होता है श्रोता साथियों, यकीन मानिए, बच्चों के भीतर वह ताकत पैदा करता है जो उसे कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ने का साहस देती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों को यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, हमें बच्चों के सामने सफलता की ऐसी तस्वीर नहीं रखनी चाहिए जिसमें केवल जीत, अच्छे अंक और पुरस्कार ही दिखाई दे। उन्हें हमें ये भी बताना है कि सीखने की यात्रा में रुकावटें तो आएंगी, योजना बदलती है और कई बार मेहनत के बावजूद मनचाहा परिणाम भी नहीं मिलता। ऐसे अनुभव अंजलि जी बच्चे को धैर्य, निर्णय लेने, अपनी कमियों को पहचानने और नए तरीके आजमाने की क्षमता देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि श्रोता साथियों हम हर मुश्किल को बच्चे से दूर कर देंगे तो वह कठिन समय में स्वयं रास्ता खोजने में कठिनाइयां महसूस कर सकता है।
0: जी हाँ कशिश, इसलिए श्रोता साथियों हमें बच्चों से केवल यह नहीं पूछना चाहिए तुम्हें कितने अंक मिले हैं बल्कि कभी यह भी पूछना चाहिए कि आज तुमने नया क्या सीखा, कौन सी चीज तुम्हें कठिन लगी और अगली बार तुम क्या अलग करना चाहोगे। ऐसे सवाल बच्चे का ध्यान परिणाम से हटाकर सीखने की प्रक्रिया पर ले जाते हैं। धीरे धीरे वह अपनी प्रगति को दूसरों से नहीं बल्कि अपने पिछले प्रयास से तुलना करना सिखाता है।
1: जी हाँ,
0: याद रखिए कि एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन हम हर गिरने के बाद उसे साइकिल छीन नहीं लेते बल्कि उसे फिर उठाते हैं, संभालते हैं, फिर से प्रयास करने देते हैं। तो जीवन की चुनौतियों के साथ भी हमें बच्चों के प्रति यही धैर्य रखना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: हम अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दें श्रोता साथियों जिनमें उनके सपनों के साथ साथ उन्हें चुनौतियों से निपटने की समझ भी मिले, उन्हें आगे बढ़ने की आजादी दें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर दें और यह विश्वास दें कि उनका भविष्य किसी एक परीक्षा, प्रतियोगिता या परिणाम से तय नहीं होता। बच्चे को हर बार जीतने वाला नहीं, बल्कि हर अनुभव के बाद थोड़ा और समझदार, साहसी और सक्षम बनने वाला इंसान बनाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जब बच्चा यह सीख जाता है कि रास्ते में आने वाली ठोकरें उनकी पहचान नहीं बल्कि उनकी यात्रा का हिस्सा है, तब वह असफलता से डरता नहीं। वह उससे संवाद करना, उसे समझना और उसके आगे अपना रास्ता बनाना सीख जाता है।
1: बिल्कुल।
0: यही सीख उसे बचपन से आगे बढ़ाकर एक मजबूत व्यक्ति में बदलती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: खूबसूरत गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

भाई न बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्य जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुन ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो घणेमान स्वागत करा हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के भाई बहनों अमे अमारे टाइम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बहनों आज हमारे कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नो विषय है कि आदिवासी संस्कृति हरते बहुउद्देश्य कृषि वानिकी नो एक समाधान थी सके। तो भाई बहनों अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक घना कान बातें थायेगा पर कार्यक्रम शुरू कर इन्हें पहले अपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर अपनी बातें। तो भाई बहनों आप हमारे रहू आप रेडियो अपनी बातें वाघ रेडियो 90.8 FM माते।

0: બાઈન બોનુ ગીત તો અહીં શું પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફેરી આપ સબનું ઘણે માન સ્વાગત કરો હું અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે ભાઈ બોનુ ગીત કે પહેલા આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હું કે હર તે આદિવાસી સંસ્કૃતિ બહુઉદ્દેશ્ય કૃષિ વાનિકીનું એક સમાધાન થઈ શકે તો ભાઈ બોનુ અણ વિષય માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહે મનીષજી સર તો સૌથી પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત મોરે કર આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્તે અંજલિ
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
1: આપકા ઓર વાગડ રેડિયો કા બહોત બહોત ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કી આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે આદિવાસી સંસ્કૃતિ જો હૈ વો કિસ તરીકે સે વનો કે સંરક્ષણ મેં અપના યોગદાન દે સકતી હૈ ક્યુંકી હમ દેખતે હૈ કે વન હમારે લિયે બહોત મહત્વપૂર્ણ હૈ અભી કે સમય મેં હમ દેખ રહે હૈ કે વનો કે સંરક્ષણ કો લેકર હર કોઈ પ્રયાસ કર રહા હૈ और आदिवासी संस्कृति हम सभी जानते हैं कि उनका जुड़ाव हमारे वनों से हमारी प्रकृति से पहले से ही बना हुआ है तो ऐसे में हम आज कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से आदिवासी संस्कृति जो है वो बहुउद्देश्य कृषि वानिकी का एक समाधान हो सकती है
1: जी बिल्कुल ये बात सभी जानते हैं कि वन संरक्षण के जो प्रयास है और आदिवासी संस्कृति से इसका जुड़ाव बहुत ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं
0: बिल्कुल
1: तो यदि वन संरक्षण के प्रयासों में आदिवासी पारंपरिक ज्ञान और लोक संस्कृति से जुड़े तरीकों का जो महत्व है उसका इनकी लोक संस्कृति में भी जो है निहित वनीकरण के जो सूत्र हैं वो अक्सर बड़े प्रभावी होते हैं और वो स्थायी भी होते हैं वनों को जो बचाने में हमेशा से लोक संस्कृतियों का योगदान रहा है
0: बिल्कुल
1: उसमें आदिवासी संस्कृति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज हम देख पा रहे हैं कि जो जंगल हमको दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण एक बड़ा जंगल हम देख पाते हैं पेड़ वनस्पति भोजन उत्पादन की प्रक्रिया परागण करने वाले कीट मिट्टी की उर्वरकता जल स्रोतों और जलवायु संतुलन इन सभी के लिए वन बहुत ही जरूरी है
0: बिल्कुल
1: और इसीलिए वन संरक्षण को सिर्फ वृक्षारोपण तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि ये एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की देखभाल का महत्वपूर्ण मसला है
0: बिल्कुल
1: तो जिसका उद्देश्य भी है कि वनों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाएं इसके संरक्षण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम प्रोत्साहित करें और हम मिलके पेड़ लगाने की जो मुहिम है यहाँ तक सीमित न रह के इस पारिस्थितिक तंत्र की संपूर्णता से जुड़ी हुई सोच के साथ इसे अपने जीवन में उतारें
0: बिल्कुल
1: क्योंकि मैं फिर से बोलना चाहूंगा वन है जो हमारे भोजन पोषण हमारी दवाइयां और हमारे पशुधन इसी के साथ साथ हमारी मिट्टी और जल इन सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण है
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा सर जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमारे जो वन अभी के समय में बचे हुए हैं वो आदिवासी संस्कृति के एक जुड़ाव से उनके प्रकृति के प्रति उनका जो समर्पण है उसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं यही सर अभी के समय में क्या चुनौतियां हमारे सामने आती है वनीकरण को लेकर ये मैं आपसे जानना चाहूंगी
1: जी सामान्य रूप से यदि हम चुनौतियों की बात करें तो वनीकरण के जो कार्यक्रम है आजकल तो ज्यादातर उनमें वृक्षारोपण पर ध्यान दिया जाता है प्रशासनिक और तकनीकी दृष्टिकोण से हम इसे ही वनीकरण का मुख्य तरीका मान लेते हैं यह तरीका पर्यावरण के संपूर्ण पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है अगर हम बात करें कि हम ऐसा क्यों मानते हैं कि ये पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है तो हम देखते हैं कि कई बार वनीकरण में जिन प्रजातियों का चयन किया जाता है तो वो गैर स्थानीय प्रजातियां होती हैं
0: बिल्कुल
1: इसी कारण से कई बार ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के भी लिए नुकसानदायक होती है और वनीकरण के लिए किए गए हमारे जो प्रयास हैं उनमें हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितना हमने उसके लिए प्रयास किए थे वो चाहे हमारे आर्थिक हो या अन्य तरह के प्रयास हों इसी तरह से यदि हम देखें कि दक्षिणी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में जहां वागड़ अंचल में तो इसके दुष्प्रभावों को हम साफ देख सकते हैं पारंपरिक रूप से राजस्थान के सामुदायिक वन और गोचर भूमि या चारागाह स्थानीय पौधों और जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षित जगह हुआ करते थे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ गैर स्थानीय पौधे काफी बड़ी मात्रा में लगा दिए गए हैं, जिससे न केवल स्थानीय घास की कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही है, बल्कि वन्य जीव और परागण करने वाले कीटों का प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो रहा है।
0: जी बिल्कुल।
1: वन संरक्षण की योजनाओं में इन परिस्थिति की और सांस्कृतिक जरूरतों की ये एक तरह से अनदेखी है, जिससे वन प्रबंधन में एक रूपता और कृत्रिमता बढ़ गई है। यानी कि एक ही तरह के पेड़ हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि जैव विविधता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि हम आपके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि किस तरीके से वनीकरण के जो मौजूदा प्रयास हैं, उसमें हमें कुछ चुनौतियां देखने को मिल रही है। नहीं सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्राकृतिक ज्ञान और स्थानीय संस्कृति का क्या योगदान है वन संरक्षण को लेकर।
1: पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय संस्कृति वन संरक्षण के प्रयासों में जो इनके सांस्कृतिक तरीके हैं उनका बहुत विशेष महत्व है।
0: जी हाँ।
1: लोक संस्कृति में निहित वनीकरण के सूत्र अक्सर प्रभावी और स्थायी होते हैं। तो उदाहरण के लिए राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान को हम अगर देखें और इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, तो पहला दृष्टिकोण प्रशासनिक है, जो कि एक मॉडल पे आधारित होता है, जिसमें कई बार व्यवसायिक वृक्षारोपण को ही मुख्य उपाय मान लिया जाता है। तो वन विभाग का या प्रशासन का ये जो दृष्टिकोण है स्थानीय क्षेत्रों में अक्सर असफल हो जाता है, क्योंकि कई प्रजातियां ऐसी होती है जो हमारे यहाँ की जलवायु के अनुरूप नहीं होती
0: है। जी हाँ।
1: तो यहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वनीकरण के स्थानीय मॉडल अपनाए जाने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के बजाय पहले स्थानीय घास और पौधों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये पौधे कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं।
0: जी जी।
1: और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाने की पहली सीढ़ी हम इन्हें मान सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब इसी तारतम्य में यदि हम दूसरे दृष्टिकोण की बात करें, तो जो हमारा आदिवासी समुदाय है, जिन्होंने अपनी पारंपरिक वनीकरण पद्धतियों का इस्तेमाल किया, उन्होंने हमारे वागड़ क्षेत्र की भूमि पर स्थानीय पौधों घासों का रोपण किया, जो जगह किन्हीं कारणों से या तो पेड़ों की कटाई से या किसी तरह की दूसरी परियोजनाओं में खत्म हो गई थी, वहां पौधारोपण के साथ साथ जल संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई।
0: जी जी।
1: और परिणाम स्वरूप कुछ ही वर्षों में वहां वन्य जीवों की भी वापसी हुई है, जल स्रोत पुनर्जीवित हुए हैं और समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र की झलक वहां नजर आने लगी है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि हम आपके माध्यम से जान पाए कि किस तरीके से हमारी जो संस्कृति है उनके प्रयासों को हम देखते हुए हमारे वनों को हम बचा सकते हैं, और किस तरीके से ये चीजें पारंपरिक ज्ञान के तौर पर हमारे जो वन है उनको बचाने में योगदान दे सकती है। यही सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वन को बचाने के लिए जो नीतियां हम देखते हैं उसमें लोक संस्कृति की आखिरकार जरूरत क्यों है।
1: तो वन संरक्षण की मौजूदा नीतियों में पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानीय जरूरतों और पारंपरिक ज्ञान को नजरअंदाज करना ही हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। वनों की वास्तविक सुरक्षा और बहाली के लिए हमें वन संरक्षण में आदिवासी लोक संस्कृति को जगह देनी होगी। वनों की पारंपरिक अवधारणाएं जैसे हमारे वागड़ क्षेत्र में मातानु वन, देवनु वन की जो संस्कृति हमें वनों के स्थानीय संरक्षण के सही रास्ते दिखाती है, क्योंकि इस तरह से संरक्षित की गई जगह से उनके उत्पादों का उपयोग करने में तो कोई रोक नहीं है, पर यहाँ से पेड़ों को काटा नहीं जाता।
0: जी जी।
1: क्योंकि इन्हें देवी या देवता का प्रतीक भी माना जाता है। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सामूहिक चेतना के सिद्धांत पे ये आधारित होते हैं, जिससे समाज में साझा विश्वास और मूल्यों की शक्ति पर जोर दिया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: यह समुदाय को प्रेरित करता है कि कि वे अपने पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाएं और वनों को एक पारिवारिक उत्तरदायित्व के रूप में देखें।
0: जी जी।
1: इसलिए पारिवारिक स्तर पर बहुउद्देशीय कृषि वानिकी की अवधारणा भी एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकती है, जिससे समुदाय अपने पर्यावरण के साथ भावनात्मक और नैतिक जुड़ाव महसूस करते हैं।
0: जी जी।
1: वन संरक्षण और वनीकरण नीतियों में लोक संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान का समावेश अत्यंत आवश्यक है, जो आदिवासी संस्कृति में पहले से ही विद्यमान है।
0: जी बिल्कुल सर।
1: जब तक वनीकरण नीतियों में सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय संस्कृति के दृष्टिकोण को नहीं अपनाया जाएगा, तब तक पर्यावरणीय स्थिरता का हमारा जो सपना है वो भी पूरा करने में कठिनाइयां होगी।
0: जी जी।
1: वनों की वास्तविक भलाई के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से हटकर पारंपरिक और सामुदायिक उपायों को अपनाने की जरूरत है।
0: जी जी।
1: तो लोक संस्कृति में निहित वनीकरण के सूत्र ही हमें वनों के संरक्षण और इनके स्थायित्व की दिशा दिखाते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से वनीकरण के लिए आदिवासी संस्कृति की जो चीजें हैं उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आदिवासी संस्कृति में वनों को देवता या माता के तुल्य माना जाता है और उनकी कटाई नहीं की जाती है, तो ऐसे में हम कार्यक्रम के माध्यम से ये समझ पाए कि किस तरीके से आदिवासी जो संस्कृति है वो बहुउद्देश्य कृषि वानिकी का एक समाधान हो सकती है। तो सर, कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी हो गई है, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: જેમ કે ભાઈ બોનો આપણે આપણા વેસ્ટમાં મનીષજી સર જોડતા કહ હતા ને એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હૈ। આશા કરા હો કે હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હૈ આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડો પણ સાથે પહેલા હામરી લાયક ઓર ગીતને મોરે પડો સૂટા।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे ही जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वक्र रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम

0: सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हम बात करने वाले हैं सड़क सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को लेकर।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, सड़क केवल आने जाने का रास्ता नहीं है बल्कि हर दिन हजारों जिंदगियों को जोड़ने वाली जीवन रेखा है। एक छोटी सी लापरवाही किसी परिवार की खुशियों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सड़क सुरक्षा केवल सरकार, पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम सच्चा स्वराज में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे श्रोता साथियों को क्यों ना हम एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले अंजलि हमने विषय बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं सड़क सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को लेकर।
1: बिल्कुल श्रोता साथियों, सड़कें किसी भी देश के विकास की धमनियों के समान होती है। ये गांवों को शहरों से, लोगों को उनके कार्यस्थल से और परिवार को एक दूसरे से जोड़ती है। लेकिन यही सड़कें कभी कभी हमारी छोटी सी लापरवाही के कारण दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है।
0: जी हाँ।
1: सड़क दुर्घटनाएं केवल वाहन या सड़कों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि परिवार की खुशियों, सपनों और भविष्य को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सड़क सुरक्षा आज केवल यातायात विभाग या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल।
1: सड़क पर चलते समय हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हम नियमों को अपनी सुविधा के अनुसार देखें, या फिर अपनी और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। वास्तव में सड़क सुरक्षा की शुरुआत किसी कानून, अभियान या सरकारी आदेश से नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिम्मेदार सोच से होती है।
0: बिल्कुल अंजलि, आज सड़कों पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दो पहिया वाहन, कार, बस, ट्रक और कई सारे वाहन हमारी दैनिक जरूरतों का हिस्सा बन चुके हैं।
1: बिल्कुल।
0: यातायात बढ़ने के साथ सड़क पर सावधानी की आवश्यकता भी बढ़ गई है। अगर वाहन चालक तेज गति, गलत दिशा, मोबाइल फोन या लापरवाही जैसी आदतों को अपनाता है तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। एक सड़क दुर्घटना का प्रभाव केवल दुर्घटना में शामिल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, परिवार के सदस्य मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इसलिए सड़क सुरक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल दुर्घटनाओं को कम करना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाना है।
1: बिल्कुल जागृति जी, अगर यही बात करें कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है, तो श्रोता साथियों, सड़क सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो सड़क का उपयोग कर रहा है। वाहन चालक हो, पैदल यात्री हो, साइकिल चालक हो या कोई अन्य सड़क उपयोगकर्ता, हर व्यक्ति को अपनी भूमिका समझनी होगी। हम अक्सर दुर्घटनाएं होने के बाद सड़क, वाहन या व्यवस्था को दोष देने लगते हैं, लेकिन कई दुर्घटनाओं को सावधानी और नियमों के पालन से रोका जा सकता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति यह सोच ले कि मेरी एक छोटी सी सावधानी किसी की जिंदगी बचा सकती है, तो सड़क सुरक्षा का अभियान वास्तव में जन अभियान बन सकता है।
0: बिल्कुल।
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि इसके लिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना है, जैसे कि सड़क सुरक्षा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार उसके नियमों का पालन करना है। लाल बत्ती पर रुकना, निर्धारित गति में वाहन चलाना, सही दिशा में वाहन चलाना, लेन का ध्यान रखना और संकेतों का पालन करना सामान्य बातें लग सकती हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन यही छोटी छोटी आदतें बड़े हादसों को रोकने में मदद करती हैं। जागृति जी, कई बार लोग सड़क खाली देखकर लाल बत्ती पार कर लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: या थोड़ी जल्दी पहुंचने के लिए गलत दिशा में वाहन चला लेते हैं। ऐसी छोटी लगने वाली लापरवाही गंभीर परिणाम ला सकती है। इसलिए नियमों का पालन केवल पुलिस की मौजूदगी में ही नहीं, बल्कि हर समय होना चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि हेलमेट और सीट बेल्ट का भी महत्व है। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग और चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हेलमेट केवल यातायात नियम पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि सिर की सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: जी जी।
0: इसी प्रकार सीट बेल्ट वाहन में बैठे लोगों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग छोटी दूरी के लिए हेलमेट या सीट बेल्ट को आवश्यक नहीं समझते, लेकिन दुर्घटना ये देखकर नहीं होती कि व्यक्ति कितनी दूर जा रहा था। इसलिए दूरी चाहे कम हो या अधिक, सुरक्षा के नियमों का पालन हमेशा जरूरी है।
1: बिल्कुल। इसी के साथ श्रोता साथियों, तेज गति नहीं, सुरक्षित गति का हमें प्रयोग करना है।
0: बिल्कुल।
1: आज जागृति जी, हम देखते हैं कि युवाओं में तेज वाहन चलाने का आकर्षण दिखाई देता है। कई बार लोग कुछ मिनट जल्दी पहुंचने के लिए वाहन की गति बढ़ा देते हैं, लेकिन सड़क पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जल्दी पहुंचना नहीं, सुरक्षित पहुंचना है।
0: जी हाँ।
1: तेज गति में चालक को अचानक सामने आई स्थिति पर प्रतिक्रिया देने के लिए कम समय मिलता है, इसलिए वाहन हमेशा सड़क, मौसम और यातायात की स्थिति के अनुसार नियंत्रित गति से चलाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि सड़क कोई रेसिंग ट्रैक नहीं है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं सड़क सुरक्षा को लेकर, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से सड़क सुरक्षा के कुछ नियम हैं जिसका हमें पालन करने की जरूरत है, वहीं बात आती है फोन से दूरी की। श्रोता साथियों, फोन ने जीवन को आसान तो बना दिया है, लेकिन वाहन चलाते समय इसका उपयोग गंभीर जोखिम पैदा करता है। एक संदेश पढ़ना, कॉल उठाना, कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन देखना भी चालक का ध्यान सड़क से हटा सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन को हाथ में लेने से बचना चाहिए। यदि किसी जरूरी कॉल का जवाब देना आवश्यक हो तो पहले वाहन को सुरक्षित स्थान पर रोकना बेहतर है। कुछ सेकंड की सावधानी ही जागृति जी जीवन भर की सुरक्षा दे सकती है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि नशे की स्थिति में वाहन चलाना अत्यंत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। नशा व्यक्ति की समझ, निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसी स्थिति में श्रोताओं, वाहन चलाना स्वयं के साथ साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है। इसलिए स्पष्ट नियम होने चाहिए, नशा किया है तो वाहन नहीं चलाना है, सुरक्षित परिवहन का विकल्प चुनना ही जिम्मेदारी है। हम देखते हैं अंजलि कि सड़क सुरक्षा में केवल वाहन चालक ही जिम्मेदार नहीं है, पैदल यात्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सड़क पार करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, जहां संभव हो जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवर ब्रिज या निर्धारित स्थान का उपयोग करना है। सड़क पार करते समय मोबाइल में व्यस्त रहना या बिना देखे सड़क पर उतर जाना भी जोखिमपूर्ण हो सकता है।
0: जी जी,
1: बच्चों को विशेष रूप से सड़क पार करने के सुरक्षित तरीके के बारे में समझाना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ बच्चों और बुजुर्ग जो हैं वो सड़क पर अपेक्षाकृत अधिक सावधानी की मांग करते हैं। वाहन चालकों को उनके आसपास गति कम रखनी चाहिए और उन्हें सुरक्षित रास्ता देना चाहिए। विद्यालयों के आसपास, बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में विशेष सावधानी आवश्यक है। बच्चों को बचपन से ही यातायात नियमों की जानकारी दी जाए तो आगे चलकर वे जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सड़क सुरक्षा की शिक्षा घर से शुरू हो सकती है। माता पिता यदि स्वयं यातायात नियमों का पालन करेंगे तो बच्चे भी उससे सीखेंगे। बच्चों को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं है कि सड़क पर सावधानी रखो, उन्हें ये भी समझाना चाहिए कि लाल बत्ती क्यों जरूरी है, हेलमेट क्यों पहनना चाहिए और सड़क पार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: परिवार में यदि सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए तो यह आदत समाज तक पहुंच सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि, यहीं अगर युवाओं की बात करें तो युवा किसी भी समाज की ऊर्जा और शक्ति होते हैं, जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हम ये बताते हैं। सड़क सुरक्षा के प्रति युवाओं की जागरूकता समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
0: बिल्कुल,
1: युवा स्वयं नियमों का पालन करें और अपने मित्रों को भी सुरक्षित वाहन चलाने के लिए प्रेरित करें। सोशल मीडिया के माध्यम से भी सड़क सुरक्षा के संदेश लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं, लेकिन संदेश केवल साझा करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। असली बदलाव तब आएगा जब संदेश हमारे व्यवहार का हिस्सा बनेगा।
0: बिल्कुल,
1: सड़क सुरक्षा में सरकार और प्रशासन की भूमिका भी जरूरी है। अच्छी सड़कें, स्पष्ट यातायात संकेत, उचित प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षित पैदल मार्ग, जेब्रा क्रॉसिंग और प्रभावी यातायात व्यवस्था दुर्घटना को कम करने में

0: मदद कर सकती है। लेकिन केवल अच्छी सड़कें बना देना पर्याप्त नहीं है, नागरिकों को भी नियमों का पालन करना होगा। सरकार और जनता जब मिलकर काम करेंगे तभी सुरक्षित यातायात व्यवस्था विकसित हो सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि सड़क सुरक्षा को केवल किसी विशेष दिवस या अभियान तक सीमित नहीं रखना चाहिए, यह हमारी रोजमर्रा की आदत बननी चाहिए। हर बार वाहन स्टार्ट करते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का ध्यान रखना, गति नियंत्रित रखना और यातायात नियमों का पालन करना हमारी नियमित जिम्मेदारी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: सच्ची जागरूकता पोस्टर लगाने या भाषण देने से आगे बढ़कर व्यवहार में दिखाई देती है।
0: हम देखते हैं अंजलि कि सड़क पर हमारी एक छोटी सी सावधानी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। अगर हम किसी पैदल यात्री को रास्ता देते हैं, वाहन की गति कम करते हैं, हेलमेट पहनते हैं या मोबाइल का उपयोग रोकते हैं, तो हम केवल अपना बचाव नहीं कर रहे होते बल्कि दूसरों की सुरक्षा में भी अपना योगदान दे रहे होते हैं। यही जिम्मेदार नागरिकता की पहचान है।
1: बिल्कुल जागृति जी, सड़क सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति, विभाग या संस्था की नहीं है, हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। सरकार नियम और व्यवस्था बना सकती है, पुलिस उसका पालन सुनिश्चित कर सकती है और समाज जागरूकता फैला सकता है, लेकिन सड़क पर व्यवहार हमें स्वयं तय करना होगा। श्रोता साथियों, हमें इस बात को मानना होगा कि हमें जल्दबाजी से अधिक सुरक्षा को महत्व देना है, नियमों को बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा कवच समझना है, सड़क पर अपने साथ साथ दूसरों के जीवन का भी सम्मान करना है। याद रखें, सड़क पर कुछ मिनट बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन को सुरक्षित रखना। मंजिल तक पहुंचना तभी सफल होता है जब हम सुरक्षित पहुंचते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जागृति जी, सुरक्षित सड़क केवल अच्छी व्यवस्था से नहीं बनती बल्कि जिम्मेदार नागरिकों से बनती है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए आज ही हम ये नियम बनाएं कि हम सभी नियमों का पालन करेंगे, सावधानी से चलेंगे, दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि सड़क पर हमारी जिम्मेदारी केवल अपनी जिंदगी तक सीमित नहीं है, हमारी सावधानी किसी और की जिंदगी भी बचा सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, आप देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा हम जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है सुबह की दिनचर्या और स्वास्थ्य को लेकर।
0: जी हाँ,
1: हम सभी जानते हैं साथियों कि हम अक्सर अपने पूरे दिन को बेहतर बनाने के लिए बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं। अच्छा भोजन करेंगे, व्यायाम करेंगे, समय पर काम करेंगे, तनाव कम करेंगे और पर्याप्त आराम करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सुबह की शुरुआत कैसी होती है? इसका असर हमारे पूरे दिन पर पड़ सकता है। जरा सोचिएगा कि सुबह आँख खुलते ही अगर हम जल्दबाजी में उठे, मोबाइल देखने लगे, नाश्ता छोड़ दे और बिना किसी योजना के दिन शुरू कर दे तो क्या हमारा मन और शरीर पूरे दिन सहज रह पाएगा? वहीं अगर मनीषा सुबह का समय थोड़ा व्यवस्थित हो, समय पर उठना, शरीर की स्वच्छता, कुछ देर खुली हवा में रहना, हल्की शारीरिक गतिविधियां, पौष्टिक नाश्ता और दिन के कामों की योजना बनाना तो दिन की शुरुआत अधिक व्यवस्थित तरीके से होती है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो आज के कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि सुबह की दिनचर्या और स्वास्थ्य का क्या महत्व है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
2: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुकी हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सुबह की दिनचर्या और हमारा स्वास्थ्य।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सुबह की शुरुआत श्रोता साथियों जैसी होती है, उसका प्रभाव हमारे पूरे दिन या काम पर पड़ता है। यदि हम सुबह जल्दी उठकर अपने शरीर और मन को समय दे, स्वच्छता का ध्यान रखें, पौष्टिक भोजन करें और कुछ समय शारीरिक गतिविधियों में लगाएं, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि हमारी दिन की शुरुआत है वो सकारात्मक तरीके से की जा सकती है।
1: बिल्कुल मनीषा, सुबह की दिनचर्या आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम हमारे श्रोता साथियों को बताएं। तो श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि सुबह का समय ऐसा समय होता है जब हमारा शरीर रात के आराम के बाद धीरे धीरे सक्रिय होता है। इसलिए मनीषा, सुबह की शुरुआत जल्दबाजी और तनाव के बजाय शांति और अनुशासन से करना अच्छी आदत हो सकती है। सुबह की अच्छी दिनचर्या का मतलब यह नहीं है श्रोता साथियों कि हर व्यक्ति को बिल्कुल एक ही समय पर उठना चाहिए या हर किसी को एक जैसी गतिविधि करनी चाहिए।
0: जी हाँ।
1: हमारी दिनचर्या हमारी उम्र, काम, स्वास्थ्य, मौसम और जिम्मेदारी के अनुसार अलग हो सकती है, लेकिन कुछ सामान्य आदतें ऐसी हैं जिन्हें अपने जीवन में शामिल किया जा सकता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ बात करें अगर सुबह उठते ही पानी पीने की आदत की, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि सुबह उठने के बाद पानी पीना एक सरल और अच्छी आदत हो सकती है। रात भर सोने के बाद शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। पर्याप्त पानी पीना शरीर में सामान्य जल संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि सुबह सामान्य हल्का गुनगुना पानी अपनी सुविधा के अनुसार लिया जाए श्रोता साथियों, या नींबू पानी लिया जाए या शहद वाला पानी लिया जाए, तो यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है।
1: बिल्कुल,
0: दिन भर की प्यास के अनुसार श्रोता साथियों पर्याप्त पानी पीते रहना हमें चाहिए। बहुत अधिक मीठे पेय या शर्करा वाले पेयों की जगह श्रोता साथियों पानी को प्राथमिकता देना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, उठते ही हमें मोबाइल से दूरी बनानी है।
0: जी हाँ,
1: यानी कि आज मोबाइल हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुका है, लेकिन श्रोता साथियों सुबह आँख खुलते ही मोबाइल से सोशल मीडिया, वीडियो या संदेश देखने की आदत हमारी सुबह का काफी समय ले सकती है। इसलिए कोशिश करें कि जागने के तुरंत बाद मोबाइल देखने के बजाय कुछ समय खुद के लिए रखें। खिड़की या आंगन में जाएं, वातावरण को देखें, कुछ गहरी और सामान्य सांस लें और अपने दिन की शुरुआत शांत मन से करें। एक छोटी सी आदत, सुबह का पहला समय मोबाइल नहीं खुद को दें। इसी के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता

0: स्वच्छता का ध्यान रखें, यानी कि मनीषा सुबह उठने के बाद व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान देना बेहद जरूरी है। दांतों की सफाई करना, चेहरा धोना, हाथ पैर साफ करना, नियमित स्नान करना, साफ कपड़े पहनना हमारी दैनिक स्वच्छता का हिस्सा है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लोग सुबह जल्दी खेत पशुओं की देखभाल या दूसरे कामों के लिए निकल जाते हैं, वहाँ भी व्यक्तिगत स्वच्छता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: साथियों, स्वच्छ शरीर केवल दिखने के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें आगे भी हमारे श्रोता साथियों से ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि मनीषा, हमने गीत से पहले ढेर सारी बातों को जाना, यही सुबह थोड़ी देर शारीरिक गतिविधियां भी हमें करनी है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम केवल जिम जाने का नाम नहीं है। अगर आपके पास जिम की सुविधा नहीं है तो कोई समस्या नहीं, आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ देर पैदल चल सकते हैं, हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, घर के आसपास टहल सकते हैं या रोजमर्रा के कामों में सक्रिय रह सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार हल्की गतिविधियां करें और यदि कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो चिकित्सीय सलाह के अनुसार व्यायाम करें। याद रखिए, शरीर को जितना आराम चाहिए उतनी ही जरूरत उचित गतिविधियों की भी है। अगर
1: हाँ।
0: आपके घर के आसपास श्रोता साथियों पेड़ पौधे, खेत, आंगन या खुली जगह है तो सुबह कुछ समय वहाँ बिताना मन को अच्छा महसूस करा सकता है। पक्षियों की आवाज सुनना, पौधों को देखना, आंगन में बैठना या थोड़ी देर शांत वातावरण में रहना दिन की शुरुआत को सुखद बना सकता है। इसके लिए किसी महंगे संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है मनीषा। सुबह का शांत वातावरण हमारे मन को दिन की भागदौड़ के लिए तैयार करने का अवसर देता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें पौष्टिक नाश्ता हमारे लिए क्यों जरूरी है इसकी, तो साथियों हम देखते हैं कि सुबह का नाश्ता दिन के महत्वपूर्ण भोजन में से एक होता है। रात भर भोजन न करने के बाद श्रोता साथियों सुबह हमारे शरीर की ऊर्जा वो कम हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि नाश्ते में अलग अलग प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं, जैसे दलिया, पोहा, उपमा, दाल, अंकुरित अनाज, दूध, दही या फल, या साथ ही श्रोता साथियों सब्जी या कोई अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ ही उन्हें भी हम शामिल कर सकते हैं। नाश्ता श्रोता साथियों हमेशा बहुत भारी या बहुत तला हुआ नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि संतुलित भोजन लेना हमारे लिए और अधिक लाभकारी हो सकता है। स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करना हमारे लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
0: बिल्कुल मनीषा, सुबह का समय केवल काम करने का समय नहीं है, परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मिनट बातचीत करना भी जरूरी है। बच्चों से पूछें आज स्कूल में क्या है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है। बुजुर्गों का हाल पूछें, पति पत्नी आपस में दिन के जरूरी कामों की जानकारी साझा कर सकते हैं। इन छोटी सी बातचीत से घर के काम व्यवस्थित हो सकते हैं और परिवार में संवाद भी बढ़ सकता है। साथियों सुबह अगर हम अपने जरूरी कामों की सूची बना लें तो दिन को व्यवस्थित करना आसान हो सकता है। जैसे कि आज खेत का कौन सा काम करना है, बच्चों को स्कूल कब भेजना है, बाजार से क्या लाना है, किस जरूरी व्यक्ति से बात करनी है और आज अपने लिए कौन सा काम करना है। हर काम को एक साथ करने की कोशिश करने के बजाय जरूरी कामों को प्राथमिकता दे, इससे भागदौड़ और भूलने की संभावनाएं कम हो सकती हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वास्थ्य और स्वच्छता का संबंध है वो बहुत गहरा है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह घर की सफाई, पीने के पानी की स्वच्छता, भोजन बनाने की जगह की सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना भी साथियों हमारे लिए बहुत जरूरी है। कूड़ा हमेशा श्रोता साथियों निर्धारित स्थान पर ही हमें डालना है। घर और आसपास पानी जमा हो तो उसे बाहर निकाल के वहाँ सफाई करनी है और विशेष रूप से श्रोता साथियों बरसात के मौसम में हमें इन सब का ध्यान रखना है। स्वच्छ वातावरण बीमारियों के फैलाव को कम करने में सहायता कर सकता है, इसलिए श्रोता साथियों सुबह की दिनचर्या केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि अपने आसपास के वातावरण की देखभाल उसमें शामिल होनी चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, हम अपने शरीर की सफाई तो करते हैं लेकिन मन की सफाई के बारे में अक्सर नहीं सोचते। सुबह कुछ मिनट शांत बैठना, प्रार्थना करना, ध्यान करना, सकारात्मक विचार पढ़ना या बस अपने दिन के बारे में शांत मन से सोचना मन को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। अगर सुबह ही मन तनाव, चिंता और नकारात्मक खबरों में उलझ जाए तो पूरा दिन उसी भावना के साथ शुरू हो सकता है। इसलिए सुबह खुद से एक सकारात्मक बात कहें कि आज मैं अपने जरूरी कामों को शांत मन से पूरा करूंगा। साथियों गांव का जीवन शहरों से अलग होता है, यहाँ सुबह कई लोगों की शुरुआत सूरज निकलने से पहले ही हो जाती है। किसी को पशुओं की देखभाल करनी होती है, किसी को खेत जाना होता है तो किसी महिला को घर और परिवार के काम संभालने होते हैं, तो बच्चे स्कूल की तैयारी करते हैं। ऐसी स्थिति में सुबह की दिनचर्या बनाना मुश्किल लग सकता है लेकिन दिनचर्या का मतलब यह नहीं है कि हम हर काम के लिए अलग से बहुत समय निकालें। छोटी छोटी आदतों को रोज के कामों में शामिल किया जा सकता है। पशुओं को चारा देने से पहले हाथ साफ करें, खेत जाने से पहले पानी, भोजन की व्यवस्था करना, बच्चों के लिए पौष्टिक नाश्ता तैयार करना और काम के बीच पर्याप्त पानी पीना, ये सभी स्वस्थ दिनचर्या का हिस्सा है। श्रोता साथियों आप सभी को कहना चाहेंगे कि स्वस्थ जीवन की शुरुआत हमेशा किसी बड़ी चीज से नहीं होती है। कभी कभी बदलाव की शुरुआत हमारे घर के आंगन से होती है, सुबह की पहली किरण से होती है और हमारी छोटी सी आदत से होती है। श्रोता साथियों, सुबह का समय हमें हर दिन एक नया अवसर देता है
1: जी हाँ।
0: अपने शरीर को सक्रिय रखने का, मन को शांत रखने का, परिवार के साथ जुड़ने का और अपने कामों को बेहतर तरीके से करने का।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए अपने सुबह को बोझ न बनाएं, उसे अपने स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की पहली सीढ़ी बनाएं। याद रखिए, सुबह जैसी होगी दिन को वैसी दिशा देना आसान होगा, इसलिए अपने सुबह को स्वस्थ, शांत और व्यवस्थित बनाइए। इसी संदेश के साथ कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से हम विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी बिल्कुल।
0: तो इस विषय के लिए, राय सुझाव के लिए आगे हम कार्यक्रम में आपको हमारा पता अवश्य बताएंगे, लेकिन अभी मन कर रहा है मनीषा एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर और स्वागत करती हूं श्रोता साथियों आप सभी का हमारे आज की विशेष कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि सपनों की उड़ान कार्यक्रम जो हमारा है वो हमारे लिए सबसे प्रेरणादायी कार्यक्रम है, क्योंकि हम जो युवा साथी हैं वो कहीं ना कहीं हर बार हर किसी चीज को लेकर परेशान ही रहते हैं, क्योंकि वर्तमान का हमारा चलन ही ऐसा हो गया है, हमारी जीवन शैली ही ऐसी हो गई है कि हम हर वक्त परेशान ही रहते हैं। तो कार्यक्रम सपनों की उड़ान में श्रोता साथियों हम आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिनके बारे में जानकर आपको अंदर से आत्मविश्वास भी मिलता है और आप अपने जीवन में आगे भी बढ़ पाते हैं। तो आज भी श्रोता साथियों ऐसा ही एक नया विषय मैं कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आई हूं। आज हम बात करेंगे सकारात्मक सोच की शक्ति की, क्योंकि श्रोता साथियों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारी सोच का एक अलग ही महत्व होता है।

देखते हैं ना कि ऐसा कहा भी जाता है कि जैसी सोच होती है वैसा ही हमारा मन होता है, और जैसा हमारा मन होता है वैसा हमारा तन होता है। तो श्रोता साथियों, हमारे पूरे जीवन की जो गाड़ी है वो हमारी कह सकते हैं कि सोच पर ही टिकी हुई है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। हम जानेंगे साथियों कि सकारात्मक सोच क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो इसके कौन कौन से फायदे हमें होने वाले हैं। तो मजा बहुत आएगा कार्यक्रम में साथियों, ढेर सारी बातें होंगी, गीत संगीत भी होंगे। तो श्रोता साथियों, गीत संगीत से मुझे याद आया कि पहले मैं आपको शुरुआत में गीत संगीत सुनवा देती हूँ, फिर हम बातचीत की फिर से शुरुआत करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस गीत के साथ मनोरंजन करते हैं और फिर हम हमारी बात को फिर से जारी रखेंगे।

प्यारे श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है सपनों की उड़ान कार्यक्रम में। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले मैंने आपको विषय तो बता ही दिया कि आज हम बात कर रहे हैं सकारात्मक सोच की शक्ति को लेकर। साथियों, जीवन में हम कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों से जरूर गुजरते हैं जब हमें सब कुछ कठिन लगता है। देखते हैं कि कभी पढ़ाई का दबाव है, कभी काम की चिंता है, कभी भविष्य की अनिश्चितता। साथ ही साथियों, ऐसे कई कारण होते हैं जो मन को हमारे कमजोर कर देते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है, और वह है हमारी सकारात्मक सोच की शक्ति। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दोस्तों सकारात्मक सोच क्या है और हमारे जीवन को ये कैसे बदल सकती है इसको लेकर, और हम इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं। अगर साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सकारात्मक सोच होती क्या है, तो साथियों सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि जीवन में कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी, बल्कि समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती ही है। साथियों, सकारात्मक सोच का असली अर्थ ये है कि हम कठिन परिस्थितियों में खुद को उम्मीद और समाधान के साथ कैसे जीवित रख सकते हैं, और उन्हीं कठिन परिस्थितियों में हम उम्मीद के साथ समाधान को कैसे खोजते हैं। श्रोता साथियों, क्योंकि जब इंसान सकारात्मक सोच रखता है श्रोता साथियों, तो वह हर समय को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखता है। ऐसे तो साथियों, कई लोग ये भी मानते हैं कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है, और हम देखें तो ये बात सत्य भी है, क्योंकि श्रोता साथियों, हमने हमारे बड़े बुजुर्गों से भी ये सुना है कि जीवन एक संघर्ष है। अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो समस्याओं का सामना करना तो हमें सीखना ही होगा, क्योंकि श्रोता साथियों, ऐसा कहा जाता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम सही समय पर ये सोचते रहें कि मैं नहीं कर सकता, ये बहुत ही मुश्किल है, मेरे पास क्षमता नहीं है इसे करने की, तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास इससे कमजोर होने लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर इसके विपरीत हम ये सोचे कि मैं कोशिश कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसी ढेर सारी बातें हैं साथियों, तो वही सोच हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। इसलिए ये कहा जाता है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बनता जाता है। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में भी मैंने आपको बताया कि जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हम बनते जाते हैं, जैसा हमारा मन है वैसा हमारा तन है साथियों। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम अपने अंदर नकारात्मकता को भरते ही जाएंगे तो हमारा स्वभाव इससे बदल जाएगा। और देखेंगे श्रोता साथियों कि अगर हम हमारे अंदर नेगेटिविटी को लेकर घूमते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पास आना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में यही चलेगा कि इससे कुछ भी पूछो या इसके बारे में कुछ भी बात करो, ये हमारी बात को सहमत होगा ही नहीं, ये तो उल्टी बात ही करेगा। तो श्रोता साथियों, इन सभी बातों का एक ही मतलब निकलता है कि हमें हमारे जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाना है, क्योंकि सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है साथियों जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी, हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचने में मदद करेगी। साथ ही हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच के माध्यम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो श्रोता साथियों, जैसा कि बातें तो कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे बहुत ही अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे। आगे भी श्रोता साथियों ढेर सारी बातें हम करेंगे कि सकारात्मक सोच के क्या फायदे होते हैं, लेकिन अभी हम मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में, क्योंकि जब कार्यक्रम में हम बात कर ही रहे हैं साथियों, तो मनोरंजन करना भी जरूरी है। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों बातें बहुत अच्छी चल रही थी, हम जान रहे थे कि हमारे जीवन में सकारात्मक सोच का क्या महत्व है। अगर इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं और गीत से पहले जैसा कि साथियों हमने जाना था कि सकारात्मक सोच का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम जैसा कि जान पाए थे कि जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो जो असंभव कार्य भी है वो भी हमें संभव लगने लगते हैं। हमारे अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जागता है साथियों, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि ये कार्य तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन वहीं इसके विपरीत देखें, हमारे अंदर नकारात्मक सोच है तो हमें हर चीज मुश्किल लगेगी। हम अगर संघर्ष कर रहे हैं साथियों तो उसमें भी हमें बार बार असफलता मिलेगी और उस असफलता की वजह से श्रोता साथियों हमारे अंदर निराशा आ जाती है, जिसके कारण हम आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है, बल्कि हमारे मन में ये बात घर कर जाती है कि मुझसे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सब भी मुझे यही कहते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि लोग तो बातें करेंगे। श्रोता साथियों, आपने एक बात भी सुनी होगी कि लोगों का काम है कहना, लेकिन श्रोता साथियों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि जिंदगी हमारी है, हमें क्या करना है वो हमें तय करना है। हम नकारात्मक सोच लेकर घूमते हैं तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि नुकसान ही नुकसान है, वहीं अगर हम सकारात्मक सोच को लेकर बैठे हैं, हमारे अंदर सकारात्मक सोच है श्रोता साथियों, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जीवन ही बिल्कुल बदल जाएगा। आप हर काम को करने के लिए तत्पर रहेंगे, आपको नेगेटिविटी में भी श्रोता साथियों पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो अगर अब यही बात करें कि सकारात्मक सोच के क्या लाभ होते हैं, तो साथियों सकारात्मक सोच हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव लेकर आती है। सबसे पहला लाभ तो ये है श्रोता साथियों कि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें अपने अंदर छिपी क्षमता का एहसास होने लगता है और हम देखते हैं श्रोता साथियों कि उस क्षमता की वजह से, उस आत्मविश्वास की वजह से हम अपने हर कार्य को ठीक तरीके से सही ढंग से कर पाते हैं। तो श्रोता साथियों कहने का मतलब यही है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच को जगह देनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने जीवन में श्रोता साथियों दो तरह के लोग मिलेंगे, सकारात्मक लोग भी और नकारात्मक लोग भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप पे ये निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में किसके गुणों को शामिल करते हैं। अगर आप श्रोता साथियों नकारात्मक लोगों की बातों को समझते हैं, उनकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, उनकी बातों में रुचि रखते हैं, तो आपके अंदर भी नेगेटिविटीज ही आएंगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आप सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी संगति में रहते हैं श्रोता साथियों, तो आपके अंदर सकारात्मक चीजें आएंगी। तो ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि श्रोता साथियों आपको अपने जीवन में सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ ही संगति बनानी चाहिए, क्योंकि यही साथियों हमारे जीवन को सुखद, खुशहाल और सफल बना सकता है। तो इन्हीं आशाओं के साथ दोस्तों अब मैं कार्यक्रम के माध्यम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो जरूर लूंगी साथियों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं श्रोता साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, हमारा पता है कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपड़ो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपड़ो इंतजार करी रू है।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खो